0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम।

ये एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जून सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारे आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को ही आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 6:05 पर चिंतन, इसी के पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण

0: सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

चिंतन लघुता। जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता और किसी छोटे अर्थात लघु महत्व के कार्य करने से व्यक्ति की महानता में कोई कमी नहीं आती है। ये हमारा वहम है कि छोटे या महत्वहीन कार्यों को करने के लिए हमें भी छोटा बनना पड़ता है। महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन से समाज को समझाया है कि छोटे छोटे कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अन्य बड़े कार्य। अंग्रेजी पोशाक छोड़कर जब बापू ने एक धोती अपने शरीर पर धारण की थी तब भी यह स्पष्ट संदेश था कि हम साधारण वस्त्रों से भी अपने जरूरत का काम निकाल सकते हैं। बापू अपने

0: वस्त्रों के लिए स्वयं चरखा चलाकर सूत कातते थे। इससे गांधी जी की विराटता में कोई लघुता नहीं थी। आज के दौर में जबकि शहरीकरण की रफ्तार बढ़ रही है और ग्रामीण आबादी रोजगार धंधों की तलाश में गांव छोड़कर शहरों में बस रही है, तो एक छटपटाहट उनके मन में भी है, बेचैनी है, नए काम की तलाश में परिवार के परिवार चिंतित हैं। और ये इसलिए कि हमने गांव में सहज उपलब्ध छोटे धंधों को हे दृष्टि से देखना शुरू किया। सूत कताई, टोकरी बनाना, चटाइयां बनाना, रस्सी बुनना, इसी तरह के कई छोटे छोटे कार्य थे जो दिखने में लघु रूप में जरूर थे, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कार्यों के कारण गांव में स्वरोजगार उपलब्ध था। क्योंकि काम छोटे थे लेकिन हमारी इच्छाएं बड़ी, इसीलिए ये महत्वपूर्ण कार्य लघु ही बने रहे और शहरीकरण की मानसिकता में अधिक कमाने की चाह में हमने अपनी मानसिक शांति को खो दिया। आज ग्रामीण आबादी शहर में रहकर ना शहर को जी पा रही है और ना गांव की जड़ों को भूल पा रही है। इसका एकमात्र कारण है हमारी सोच का छोटा हो जाना।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। वंदना कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये देश गान।

0: गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम मेन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं, आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का। आज का प्रसंग संगीतकार है सतीश भाटिया।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहसों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

अभी आपने रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 6:40 हो चुके हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुख्य रे कार्यक्रम, उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही पलों में हमारे किसान भाई बहन सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर लोक भजन आप सुनेंगे प्रेमदास व साथियों की आवाज में। बजकर 20 पर प्रसारित होगा वातायन। वातायन में आप सुनेंगे विज्ञान वार्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, भारत की नई उड़ान। वार्ताकार है विनीत शुक्ला। कुछ दिल से कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर। कार्यक्रम की थीम रहेगी एकांत

राजस्थानी लोक संगीत 8:45 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे 9:30 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर। ठीक 11 भी आप सुगम संगीत का आनंद ले सकते हैं। फिल्म संगीत 11:30 पर।

समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से प्रातः 8 बजे, हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 9 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से 7:30 पर 10 बजे दिन के 12 बजे के बाद भी आप विविध भारती सुन सकते हैं।

एक नजर शाम की सभा की तरफ। शाम की सभा में 5:05 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। बैरानी बात आप सुनेंगे रात्रि 8:00। छह बजकर 30 मिनट पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 7 में जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम 7:00। 7:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार ठीक 11 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे हैं रात्रि 10 बजे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न किया। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए हमारे किसान भाई बहन सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात।

खेती निवाद कार्यक्रम हमारा वाला सब किसान भाइयों ने मांझी भाई नो राम राम। किसान भाइयों आज आप बात करेंगे खेती में या अपनी जो कृषि है एंड में मौसम ने पूर्वानुमान की जानकारी रखी कितनी आवश्यक है। तो आप सब जाना किसान भाइयों के कृषि पूरी तरह की प्रकृति और मौसम ऊपर निर्भर है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और बादलनी जो स्थिति है ये फसलनी वृद्धि और उत्पादन ने हीदू हीदू प्रभावित करे हैं। आवा में मौसम की सही जानकारी किसान ने समय ऊपर सही निर्णय लेवा में मदद करे हैं। तो किसान भाई तो बुवाई बल्ले आनो कितलू महत्व है तो जो खरीद नी फसल नी बुवाई है ये बारिश ऊपर निर्भर है, वर्षा ऊपर आधारित है। आवा में मौसम पूर्वानुमान किसान अगर लगाड़ी ने राखे या एने बारा में जानकारी राखे तो एने थी कि किसान है ही बुवाई करेणी वक्त बीजों नो अच्छू उत्पादन लई सके, अच्छू अंकुरण लई सके और एने थी कि अच्छू उत्पादन एने मिली सके। आ करवा थी कि एने बीजा वगत या दोबारा बुवाई नी आवश्यकता नहीं पड़े। एने हाथे हाथे सिंचाई नो प्रबंधन जे करवो पड़े एने भी आ सहायक रहे, केम के अगर मौसम ने पूर्वानुमान थी कि आबा वाला से दाड़ा है एने वर्षा नी संभावना हो तो किसान सिंचाई ने टाली सके। तो सिंचाई टालेगा तो एने थी कि पानी नी बचत थागा, हाथे हाथी बिजली नी बचत थागा और एनो जे श्रम है एने भी बचत थागा। तो आ सिंचाई प्रबंधन करवा में भी मौसम नो पूर्वानुमान बहुत सहायक साबित था है। आने थी कि अपने पानी बिजली और श्रम नी बहुत अच्छी बचत थी सके। किसान भाई फसल सुरक्षा में भी मदद करे जिम के आंधी हो, ओलावृष्टि हो, भारी बारिश या लू हो या अगर पालो पड़े आवी जे मौसम नी जे घटना है इनी जानकारी अगर पहले थी कि मिली जा तो किसान अपनी फसल ने सुरक्षित रखवाना जे उपाय है ये समय रहते करी सके। तो आने थी कि अपने फसल नी सुरक्षा थी जा तो आप फसल सुरक्षा में मददगार साबित थी सके। एमनेम किसान भाई कीट है या जे रोग आवी जाए अपने फसल माते तो एनु प्रबंधन करवा में भी आ ये सहायक सिद्ध थागा। जेम के घणा कीट या जे रोग है एक मौसम विशेष नी वजह थी कि बहुत तेजी थी कि फैले एनो प्रसार है ये मौसम नी वजह थी कि था। तो मौसम नो अगर पूर्वानुमान है तो एना आधार ऊपर आपणे समय रहते कीट या जे रोग है एनु नियंत्रण ना उपाय अपनावी दे तो आना थी कि जे नुकसान है एने आपण रोकी सके या नुकसान ने कम करी सके। तो आ कीट और रोग प्रबंधन में भी मौसम नो जे पूर्वानुमान है ये आपणे बल्ले बहुत मददगार साबित थी सके। किसान भाइयों फसल नी कटाई और भंडारण में लाभ अगर आनी आप बात करो तो कटाई ने पहले अगर वर्षा नी जे संभावना है इन्हें जानकारी मिली जा तो किसान उचित समय ऊपर या सही समय ऊपर ही फसल नी कटाई करी सके और आपणी जे उपज है इन्हें सुरक्षित राखी सके और सुरक्षित भंडारण करी सके। तो अटले बीज ने बुवाई थी कि लगाड़ी ने फसल ने कटाई तक मौसम ने पूर्वानुमान अगर आपने जानकारी है तो आपने हमेशा आने थी कि लाभ मिलेगा। अगर आप बात करें कि मौसम नी जानकारी की थी कि प्राप्त कर तो जो भारत नो मौसम विज्ञान विभाग है एने थी कि जे मौसम संबंधित जानकारी मिले एने आपण लई शक्यो। कृषि विज्ञान केन्द्र थी कि आकाशवाणी थी कि आपणा आज किसानवाणी जेवा कार्यक्रम है, चौपाल जेवा कार्यक्रम है अन्य माध्यम थी कि भी आपणे मौसम ने पूर्वानुमान नी जानकारी लई शक्यो। आजकल मोबाइल एप है, कृषि ना जे पोर्टल है और जे स्थानीय आपणो जे कृषि विभाग

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपने टुन किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं लोक भजन प्रेमदास व साथियों की आवाज में। लीजिए सुनिए अगली प्रस्तुति।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: प्रेमदास व साथियों की आवाज में गाये लोक भजन यहीं संपन्न किए गए। हम आकाशवाणी बांसुड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः का समय है 7:20। लीजिए सुनिए वातायन। वातायन में आप सुनेंगे विज्ञान वार्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, भारत की नई उड़ान। वार्ताकार हैं विनीत शुक्ला।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के विज्ञान वार्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विषय की जो भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और जिज्ञासा की सबसे सुंदर मिसाल है। हमारा विषय है अंतरिक्ष विज्ञान, भारत की नई उड़ान। कहते हैं जो आकाश छूने का सपना देखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कभी भारत में रॉकेट के पुर्जे बैलगाड़ी और साइकिल पर ले जाए जाते थे और आज

कई भारत चांद मंगल और सूर्य तक पहुंच चुका है। ये यात्रा केवल तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक और राष्ट्र गर्व से भरी हुई है। सीमित संसाधनों के बावजूद यदि दृष्टि स्पष्ट हो और संकल्प अटूट हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा अतीत से वर्तमान तक हम बात करें, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता से वर्ष 1962 में शुरू हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का गठन हुआ। इसके जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्होंने कहा था, हम अंतरिक्ष में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अन्य देशों की बराबरी करें, बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि हमारे लोगों का जीवन सुधर सके। 1963 में केरल के तटीय तुम्बा गांव में भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा गया था। वहां कोई विशाल प्रयोगशाला नहीं थी, एक पुराने चर्च को कंट्रोल रूम बनाया गया था और रॉकेट के पुर्जे रेलवे स्टेशन से साइकिल और बैलगाड़ी पर लाए जाते थे। यही भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था। डॉक्टर साराभाई का सपना था कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग सिर्फ सैन्य और प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए हो, जैसे मौसम का पूर्वानुमान, दूर संचार, शिक्षा और कृषि में। 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचा। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी। इसके बाद भास्कर, रोहिणी, इनसेट और IRS जैसे उपग्रहों ने भारत को मौसम, संचार और संसाधन मानचित्रण में नई ऊंचाइयां दी। इन्हीं वर्षों में इस यात्रा से जुड़ा एक और नाम चमका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। वे इसरो SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 परियोजना के निदेशक रहे, जिसके माध्यम से भारत ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रक्षेपण यान था और इस सफलता को भारत को स्पेस क्लब में प्रवेश दिलाया। उसके बाद उन्होंने DRDO में जाकर भारत के रक्षा अनुसंधान को नई दिशा दी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के माध्यम से भारत को अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग जैसे मिसाइलों का वरदान मिला। लेकिन डॉक्टर कलाम केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कहा था, सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वह है जो सोने नहीं देता है। डॉक्टर कलाम की सोच ने इसरो और पूरे राष्ट्र को यह सिखाया कि सीमाएं नहीं, संकल्प ही असली शक्ति है। फिर आया 1990 का दशक, जब इसरो ने अपने स्वदेशी रॉकेट PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्चरों में से एक बना। वर्ष 2017 में इसरो ने PSLV C-37 के जरिए एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इनमें से 3 भारतीय उपग्रह थे और 101 विदेशी उपग्रह थे। महत्वपूर्ण विदेशी ग्राहकों में संयुक्त राज्य अमेरिका, इसराइल, कजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड शामिल थे। अब हम बात करते हैं इसरो की महान उपलब्धियां। चंद्रयान 1, 2008 में चंद्रयान 1 भारत को चंद्रमा की सतह में पानी के अणु की खोज का श्रेय दिलाया। ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की। चंद्रयान 2 2019 ऑर्बिटल सफल रहा, जबकि लैंडर क्विक लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन मिशन से अनेक दर्जनों महत्वपूर्ण डाटा प्राप्त हुए। फिर आया हमारा मंगलयान मिशन 2013। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM पहली कोशिश में सफल रहा। भारत वह पहला देश बना जिसने पहली कोशिश में मंगल की कक्षा में यान पहुंचाया, और वह भी मात्र 450 करोड़ रुपए की लागत में, दुनिया का सबसे किफायती मंगल मिशन। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 2023। 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। यह वह क्षेत्र है जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। इस मिशन की सफलता ने भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। भारत के चंद्रयान मिशन 3 ने 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की सफलता तैनाती की गई। लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। साथ ही साथ 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। चंद्रयान 3 की सफलता साथ बता दें कि चंद्रयान 3 परियोजना की लागत केवल 600 करोड़ रुपए थी, जो इसकी सफलता में 4 चांद लगाने वाली थी। आदित्य L1
यह मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए

यह सूर्य के विकिरणों और सौर हवा और चुंबकीय प्रभावों का विश्लेषण करेगा और सौर तूफानों से उपग्रह और संचार प्रणाली की सुरक्षा बेहतर होगी। इसरो का मिशन बाहुबली CMS-03 2025 जब बात पराक्रम की आती है तो भारत का नाम अंतरिक्ष में सबसे आगे आता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 नवंबर 2025 को अपना सबसे भारी संचार सैटेलाइट लॉन्च करके एक बार फिर इतिहास रच दिया। 4410 किलोग्राम से अधिक वजन वाले इस उपग्रह को अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 की मदद से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। LVM-3 को प्यार से बाहुबली रॉकेट कहा जाता है क्योंकि यह 4 टन से अधिक वजन के उपग्रह को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता रखता है। यह सफलता न केवल इसरो के इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाती है बल्कि भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी जिससे समुद्री इलाके की निगरानी और जहाजों के बीच सुरक्षित संचार क्षमता अभूतपूर्व रूप से मजबूत होगी। भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एक विशेष सैन्य संचार उपग्रह है। यह पुराने GSAT-7 रुक्मणी की जगह लेगा जो 2013 तक सक्रिय था। यह उपग्रह पूरी तरह से जैमिंग प्रूफ है अर्थात दुश्मन इसके सिग्नल को रोक या बाधित नहीं कर सकता है। जब समुद्र में कोई ब्लाइंड जोन नहीं रहेगा हर जहाज हर पनडुब्बी और हर विमान एक सुरक्षित नेटवर्क से जुड़ा रहेगा। इससे भारतीय नौसेना को रियल टाइम कम्युनिकेशन और सर्विस लाइन्स की क्षमता मिलेगी। यह भारत की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान है। गगनयान और मानव अंतरिक्ष उड़ान जब भारत अंतरिक्ष की नई दिशा में बढ़ रहा है गगनयान मिशन इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। गगनयान कार्यक्रम लगभग 20,000 करोड़ के बजट से तैयार किया जा रहा है। 4 भारतीय पायलट प्रशिक्षण के अंतिम चरण में इसमें से 3 है अंतरिक्ष में जाएंगे और यह योजना 2027 तक पहली मानव युक्त उड़ान भेजी जाएगी। इस मिशन के लिए भारत ने सटीक डॉकिंग री एंट्री और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जैसी तकनीकें विकसित की है। यह भारत को अमेरिका रूस चीन और अन्य देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निजी भागीदारी भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल इसरो तक सीमित नहीं है। देश में 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जैसे स्काई रूट अग्निकुल ध्रुवा स्पेस जो नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। भारत है नासा अमेरिका जापान की जैक्सा यूरोपीय की ESA और फ्रांस की CNES जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये साझेदारियां भविष्य में वैज्ञानिक मिशन को वैश्विक ताकत देती हैं। चंद्रयान-5 भारत के इसरो और जापान के जैक्सा के बीच एक संयुक्त चंद्र मिशन है। इसे भारत की चंद्रयान श्रृंखला का 5वां मिशन माना जाता है। मार्च 25 में इस मिशन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल में स्थायी छाया वाले भाग में पानी और बर्फ स्रोत की खोज की जा रही है। शुक्रयान-1 विनस ऑर्बिट मिशन शुक्र की सतह पर वातावरण और तापमान का अध्ययन करेगा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा केवल विज्ञान की कहानी नहीं पर आत्मनिर्भरता नवाचार और राष्ट्रीय गर्व की कहानी है। चंद्रयान से लेकर बाहुबली तक हर मिशन यह संदेश देता है हमारे लिए आकाश की सीमा नहीं बल्कि शुरुआत है। भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष को देख नहीं रहा बल्कि अंतरिक्ष से भविष्य की दिशा तय कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 7:30 होने को है। आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना है सीआईडी, इस फिल्म का मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें हैं, जानेसर अख्तर के बोल हैं।

हमें रही प्यार के इस कार्यक्रम में अब आपको घर फिल्म का गाना सुनवाते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आंखों आंखों में इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गाना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है ये, और बिरजू उस्ताद ये फिल्म का नाम है।

अब आपको सुनवाएंगे तीन देवियां फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार एसडी बर्मन। आज इन गीतों में आप सुन रहे हैं आंखों की या नयन की बातें। आज है विश्व नेत्रदान दिवस, तो अपनी आंखों का ख्याल रखिए और हो सके तो नेत्रदान की तरफ एक कदम बढ़ाइए। यही है हमारा संदेश।

हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं धनवान फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, सही लुधियानवी का लिखा हुआ गाना और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया

0: बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत

0: 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 11:15 हुए हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कुछ देसी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले जान लीजिए, मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट सोनाली। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे साथी की जो दिखता तो नहीं है, पर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर उसी के पास है। वह है एकांत। एकांत स्वयं के साथ बिताया गया समय। अक्सर लोग एकांत को अकेलेपन से जोड़ देते हैं, जबकि दोनों में बहुत ही अंतर है। अकेलापन हमें उदास करता है, लेकिन एकांत हमें स्वयं से मिलाता है। कहा भी गया है, भीड़ में रहकर जो खुद को खो दे वह सामान्य है, पर जो एकांत में स्वयं को पाले वही असाधारण है।

दोस्तों, आज का युग भाग दौड़ का युग है। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में शामिल है। मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया की सूचनाएं और जिम्मेदारियों का बोझ, इन सब के बीच हम दूसरों को से तो जुड़े रहते हैं लेकिन स्वयं से दूर हो जाते हैं। ऐसे समय में एकांत हमारे मन का विश्राम बनकर आता है। यह वह क्षण होता है जब हम अपने विचारों को सुनते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं, अपने सपनों को नई दिशा देते हैं। महान चिंतक और संत अक्सर एकांत को आत्मविकास का सबसे बड़ा साधन मानते हैं, क्योंकि जब वो बाहर का शोर शांत होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। एकांत कोई सजा नहीं है, ये तो मन का उत्सव है। जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं वही आत्मा का स्वर प्रकट होता है।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों प्रकृति हमें एकांत का महत्व सिखाती है। नदी चुपचाप बहती है, चांद नीरव आकाश में अपनी रोशनी बिखरता है और वृक्ष बिना कुछ कहे हमें छाया देते हैं। उनका मौन ही उनकी शक्ति है। जीवन में कुछ पल ऐसे जरूर होने चाहिए जब हम स्वयं के साथ बैठें, अपनी सफलताओं और असफलताओं पर विचार करें, अपने मन की धूल को साफ करें और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। कुछ देर खुद के संग बैठो, मन की बातें सुनकर देखो। दुनिया को समझना आसान होगा, पहले खुद को समझ कर देखो। तो आइए दोस्तों, एकांत से डरे नहीं, उसे अपनाएं, क्योंकि एकांत हमें कमजोर नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर से नहीं, हमारे अपने मन से ही निवास करती है।

दोस्तों एकांत का अर्थ है दुनिया से दूर होना नहीं, बल्कि कुछ ही समय के लिए स्वयं के निकट होना। यह वह क्षण होता है जब हम स्वयं से संवाद करते हैं और अपनी आत्मा से बात करते हैं। जीवन की भाग दौड़ में यदि प्रतिदिन कुछ पल एकांत को दिए जाए तो मन अधिक शांत, विचार अधिक स्पष्ट और जीवन अधिक सुंदर हो जाएगा। एकांत में जब मन से मुलाकात हुई, खुद ही खुद से कुछ बात हुई, भीड़ में जो कुछ सुनाई न दी वही आवाज आज सौगात हुई।

एकांत की राहों में मैं चलकर खुद से मिलने जाती हूँ। दुनिया के सारे शोर भुलाकर मन का दीप जलाती हूँ। कुछ सपने फिर मुस्कुराते ही कुछ यादें स्वर बन जाती है। एकांत की शांत धारा पर नई दिशा मिल जाती है। एकांत की अपनी भाषा होती है, यह बोल नहीं फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। वह सिखाता नहीं फिर भी जीवन का बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। इसलिए दोस्तों, एकांत में हम अपने आप को पहचानते हैं। अपने मन के शांत अवस्था में आकर हम खुद से मिलते हैं। यही एकांत की सबसे बड़ी बात है।

दोस्तों, भीड़ हमें दुनिया से मिलाती है, लेकिन एकांत हमें स्वयं से मिलाता है, और जो स्वयं से मिल लेता है उसे जीवन की राहें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ समय निकालकर अपने आप से मिले और अपनी जिंदगी की राहों को आसान बनाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सोनाली आपसे कुछ दिन से कार्यक्रम में समाप्त चाहूंगी, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आपने कुछ देर से कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। ये जी सुने राजस्थानी गीत। राजस्थानी गीत आप सुनेंगे लंगस एंड मंगान यार्ड्स और मीठी भाई के युगल स्वर में।

0: युगल स्वर में गाए राजस्थानी गीत यहीं संपन्न किए जाते हैं। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13

0: 16 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बैठक रखी गई है। बैठक में एनडीए के शासन करने वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में सुबह से विशेष पूजा आरती और प्रार्थना सभाएं रखी गई हैं। देवस्थान विभाग के सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जैसलमेर स्थित बांके बिहारी मंदिर और पोकरण के बाबा रामदेव मंदिर में विशेष पूजा की गई। वहीं पाली के सुमेरपुर के जोगेश्वर महादेव मंदिर में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पूजा कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। बारा में भी जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने विशेष पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पिछले 12 सालों में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है। सवाईमाधोपुर के रहने वाले जयदीप सिंह राजावत ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को उपयोगी बताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: मेरा नाम जयदीप सिंह राजावत है। मैंने सूर्य घर योजना में 3 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगवाया था, जिसमें मैंने मेरा जो राशि थी वो 2 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से मुझे 78,000 रुपए सब्सिडी के द्वारा किए गए केंद्र सरकार के, और इस स्कीम से बहुत लाभान्वित हुआ मैं। मुझे अभी तक एक भी बिल का राशि देने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं इस स्कीम के लिए आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये आगे निरंतर बनी रहे।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल से मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
2: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन रहा है।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का और 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ये नारी चौपाल जिला और ब्लॉक स्तर पर लगाई जा रही है। इन चौपालों का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। जैसलमेर में नगर परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय नारी चौपाल रखी गई है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता के अवसरों के बारे में बताया जाएगा। बाड़मेर में होने वाले आयोजन में विभिन्न विभागों के अधिकारी और लाभार्थी महिलाएं भाग लेंगी। अजमेर के सभी 5 ब्लॉक में नारी चौपाल लगाई जाएंगी। इनमें राजीविका से जुड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां हिस्सा लेंगी। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सभागार में होने वाली नारी चौपाल में महिलाओं के लिए विभिन्न सत्र रखे गए हैं।
3: नारी चौपाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम

0: जैसे विषयों पर जागरूकता संवाद सत्र आयोजित कर महिलाओं में निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में राजीविका समूहों की सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन तथा विभिन्न विभागों की महिला प्रतिनिधि भाग लेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। कल हुई इस आगजनी की घटना में कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। 3 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा है कि यह फैक्ट्री रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। मामले की जांच की जा रही है तथा अवैध रूप से संचालित गोदाम और फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। ये भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुचारू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 4 सूत्री रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि बंदरगाह प्राधिकरण इस विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल देवांशी शर्मा ने अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर बी हैंड बैलेंस की व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं हेड कांस्टेबल गायत्री देवी ने सीनियर सी महिला बैक बेंडिंग इंडिविजुअल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों को ये पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी ये सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। तेज उमस भरी गर्मी और धूप की तपिश से लोग प्रभावित हैं। कल ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकांश हिस्सों में पारा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। दिन के साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू में पारा 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने और कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने तथा तेज धूल भरी हवाएं चलने की आशंका जताई है। वहीं आज जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बांसुड़ा का माही चैनल है, FM में 101.3 MHz पर। 9:10 हुए, आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आपको सुना रहे हैं पंकज उदास की आवाज में गाई चुनिंदा गजलें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास की आवाज में गए गजलें यही संपन्न की जाती है। ये आकाशवाणी बांसुड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विंगलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमानाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र

0: चाय की बात कल हो ही गई है, तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
1: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे।
0: जी
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
0: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
1: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की।
0: जी
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
0: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
0: जी
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
0: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
0: जी
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
0: जी
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: हैं।
1: फिर क्या होता है, विमलेश?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी,
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है।
0: जी
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं।
0: जी
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
0: जी
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
2: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो चलो।
1: एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता। नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं।

0: आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
1: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा
0: जी।
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ
0: जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी। और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
2: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
3: यही रेस्ट हाउस में।
2: रेस्ट हाउस में
3: जी?
2: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
3: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए, कल मिलते हैं। ओके
2: ओके,
3: बाय
2: बाय।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।

0: मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग।
2: आइए आइए, स्वागत है आपका।
1: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
0: जी
1: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
2: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
1: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
2: हैं। क्यों नहीं कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
1: अच्छा,
2: मगर अक्सर केरल आना होता रहा। लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
1: मतलब
2: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
2: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
2: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा,
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना? यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटपना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
2: अच्छा,
1: और इडुक्की के बाद इसमें नीरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
2: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिरामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था।

0: मलयत्तर और करडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
2: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी।
0: भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओ, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आपने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बज चुके हैं। आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद।

0: इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
1: नमस्कार, शुक्रिया।
0: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
1: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
0: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जानना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
1: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
0: अच्छा।
1: तो वहां पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहां पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहां, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
0: अच्छा, अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से?
1: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहां से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी, मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूंगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहां तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं नहीं इजाजत दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से जमींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज इजाजत दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया।
0: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
1: पूरे तो याद नहीं है। हीरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना, आगे
0: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
1: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, द विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और खत्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है, कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है, क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड से पहले, मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
0: क्या कहने?
1: और फिर

0: इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहां इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहां थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर, तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा, तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी, बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं, तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहां मुलाकात हुई। तो कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो इस चीज को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको सीआईडी मिली?
0: सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो सीआईडी और प्यासा की बातें करें उसके पहले हम वहीदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का आपने गाना सुना, ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हैवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं, क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा, एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ, और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं का चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म। फिर अपनी क्या बात, उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया, अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा विधि जी, साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता कि शेडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए, अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी, और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में।

0: क्योंकि जब मैं अकेले काम कर किया, जैसे चंद सीन्स थे जहां गुरुदत्त जी नहीं थे, तो उसमें गुरुदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरुदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरुदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी।
0: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरुदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती, जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल्स देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं, गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ, उसके बाद गुरुदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे, तो बात खत्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे, तो वो एक दिन घर पे आके ने जो देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं, जबा का रोल है, वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। तो गुरुदत्त, उन्होंने जाके गुरुदत्त जी को बताया, तो उनको ताज्जुब, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं, चौधरी के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबा का रोल डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अबरार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया,

0: अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ। हाँ, इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे सीआईडी बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी भी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
0: देव साहब के साथ में कैसी ट्यूनिंग थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीआईडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बट ही वॉज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ।
0: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
1: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है, मैंने कहा हाँ फॉग तो है मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगाता, तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों

नहीं लगाया। तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया। तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडरेस को पीछे बैठने दो और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था।

0: और कोई और रास्ता ही नहीं था। वो इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहां यूनिट वाले परेशान और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप?
0: खोया खोया चांद।

0: वेदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए। वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: या, या, या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैसे जी, उसमें आपने रोजी का एक कैरेक्टर किया था और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं

0: या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी ट्रेडिशनली उसको तोड़ा उसने, वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था, क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीएडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं था, वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों, तो बोले एक तो रोजी नाम है और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है वॉट एवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है, और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम ऑब्वियसली, तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा। तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया, जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत थी, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
0: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा, आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला,
1: बिल्कुल सही है,
0: कमल के लिए भी मिला। कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
1: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीजों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन थे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
0: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी,
1: हाँ।
0: सुनील दत्त साहब के साथ में,
1: हाँ जी,
0: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया उनके साथ में, उनके ट्रूप के साथ में जाते
1: हैं ना, तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहां भी जाते जवान थे वहां, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो, और काफी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहां भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
0: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है, उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
1: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था।

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा और शेर, और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और उसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बिचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग हमें इन रोल मिल जाएगा मेरे ख्याल से ही डू वेरी वेल, तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
0: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं, और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया। कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने

0: साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
1: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव, जो भी कहिए, उनके बच्चे जया, सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
0: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
1: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कवर थे। एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन, मतलब अमिताभ की वालदा, सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा, जी एक कसके लगाइए ताकि रीटे की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहां आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा, आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहां बैठी आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर के लिए, तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मार तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक, फिर छह तमाचे पड़ेंगे उसको, तो हंसने लगी। बोले नहीं नहीं, अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा, डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पढ़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया, कुछ भी हो, तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारो, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
0: यहाँ हम रेशमा और शेरा, इसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है। कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का?
1: रेशमा कैसा, वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अदा,

0: वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, वे बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल। कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था। और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है। और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज हम अपने लिए करना चाहते हैं, तो रोजी का पैशन था डांस करना। वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। राजू कहते नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है। ये कहती है नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या। उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना। वो कहते हैं कहां से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की। सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है। अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड। फिर उस वक्त राजू कहते हैं नहीं, अभी कहां सेटल होंगे। तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था। सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन। नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड।
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके में, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और, आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे। एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे?
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके। तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर लेंगे।
0: इतना हक
1: हक जता रहे थे जैसे। तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से। तो ही इज वेरी नाइस एज ए प्रोड्यूसर,
0: और एक एनर्जी से भरे हुए वो
1: बेहिसाब। मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे, तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताजी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई will call you ever ready battery.
0: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है उनका, वो जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उससे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
1: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है, हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनके फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोद में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से

खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम मेन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः 11 बजे है, आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आपको सुना रहे हैं हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज में गाई गजलें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

आपने टुन किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं हरिहरण और अलका याग्निक की आवाज में गई गजलें।

हरिहर और अलका याग्निक की आवाज में गई गजलें यही संपन्न की जाती हैं। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माहिर चैनल है। 11:30 हुए हैं, आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हमने किया है अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज में, संगीत अमाल मलिक का है। बोल संजीव के है, फिल्म है बागी।

बार बार देखो फिल्म से अभी आपने गीत सुना जसलीन रोयल और हर्षदीप कौर की आवाज में, संगीत आदित्य शर्मा का था। फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे बेवकूफिया फिल्म से, आवाज आयुष्मान खुराना की है, राघव दीक्षित का संगीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: दावत है इश्क फिल्म से गीत, अगला गीत आप सुनेंगे जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में। कौशल मुनीर के बोल हैं, संगीत साजिद वाजिद का।

मोहित चौहान की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, दिल तो बच्चा है जी फिल्म से, संजय का संगीत था। संजय के बोलते संगीत प्रीतम का। फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे बाजीराव मस्तानी फिल्म से, अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में संजय लीला बंसाली के का संगीत है।

0: अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यही थमता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 12 बज चुके हैं, आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक

आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेन्द्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं न कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी मुखर्जी ने। देव कोहली की रचना, जगदीश जे का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार।

0: कलाकार फिल्म का गीत आपने सुना, सुरेश वाडकर की आवाज में इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: सुरैया की आवाज में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूं की थी और नौशाद अली का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली पहनी,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

साथियों, इस गीत की हम आपको सिर्फ झलक सुनवा पाए हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, जो आज आप तय करेंगे अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। तो कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या है। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहां आई किस लिए हैं ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो, तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची हैं? जब आपकी टिप्पणियां देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान

जान ले, समझ ले, हमारी भावनाएं समझ ले। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत है उनमें एक और खास बात है, वो भी आपको पहचाननी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डाली ही है, अब आपको पहचाननी है क्या है। लीजिए आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल है, राजेश रोशन का संगीत। तब तक सोचिएगा सारे गीतों में क्या बात कॉमन है।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: फिर क्या हुआ?
1: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर बेशरम खा गया।
0: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
2: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ

तो अगर अब मैं ये कहूँ कि आज तो आप लोगों ने गुगली डाल दी है। हाँ, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं। और आप लोगों ने सच में जो पहचाना है वो बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है, गानों के बीच में या शुरुआत में कुछ वाक्यांश या नायक नायिका जिस पर ये गाना फिल्माया गया है उनकी आवाज है। जी हाँ, ये बात सही है। शायद आज किसी ने लिखा है, शायद आज के सब गानों में संवाद है। जी हाँ, ये भी सही है। किसी ने लिखा है, शायद वार्तालाप नुमा गाने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने कहा, सभी को मैं अभी अभी जुड़ा हूँ, इबारत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे ऐसा लगता है कि आज के गानों में जो आम बात है वो ये है कि गाने ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही है। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाजें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए कुछ जो टिप्पणियां आई है हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां कर रही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहां दिल की बात जुबां पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों की मासूमियत को दर्शाती है जहां आंखों की भाषा और धड़कनों की सरगम शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहला पहला प्यार जब होता है तो हमें लगता पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणियां हैं वो भी यही सब कह रही हैं। बहरहाल सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी का संगीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

0: था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहेब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्पणियों के बारे में। एक साथी ने लिखा है, मुलाकातें प्रेम में कितनी जरूरी है ये तो प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जब प्रेम होता है तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा कम बोलना और हर बात को समझ लेने की शुरुआत प्रेम से ही तो होती है, पर प्रेम का हर पल मूल्यवान है। यही पल है जो हसीन है, खुशनुमा है, इन पलों को जाया न होने दें, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। किसी ने लिखा है, आज की इश्किया इबारती इमरती में मिठास ही मिठास है, जहां प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार, इकरार, तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए जरूरी हैं, जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब आपको यदि इस इबारत से समझ आ गया है कि हाँ आज हम कौन से गीत सुनवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आइए अब आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं, और शब्द तो जैसे कि आपने पहचान ही लिए हैं, तो लीजिए सुनिए ये गीत कल आज और कल इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें। नीरज ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। आप यहाँ आए किस लिए, तो यही वो शब्द हैं जो आपको पहचानने थे।

आलो।

0: 슬란더! 슬란더! 슬란더! 슬란더!
1: 아프 아예 이슬리에 아프네 불라야 이슬리에 आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: रहा मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए?
0: आपने बुलाया किस लिए?
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: पूछिए देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओ, काम हो बताइए बताइए।
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए? मैंने कहा काम तो बताइए।
0: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
1: अच्छा

0: को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहां जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है, जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमय इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना
1: सुनिए।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके जमाने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं जिंदगी के नए सफर में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को

0: पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो, जब आप रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफर की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए, तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कने ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत फिल्म हमसे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है। जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्म पत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था जो आज तक धर्म पत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

0: कौन मैं?
1: हाँ तुम,
0: बस तुम।
1: ओफो।
2: तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोक झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं न कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अच्छा।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

धरती पर जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाएं, भोजन को फेंकने से बचें। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझें, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वो सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश

0: सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
3: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
3: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंट्रिम एलोकेशन कुल मिला के है

0: 6692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जरडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इसराइली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जवलालाबादी के बोल और कल्याण जैन जी का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
3: बहु बेटी फिल्म का गीत अब सुनिए। आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: दिल पे नहीं है काबू, हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती है, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो जो महफिल होती ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है।
0: हाँ।
1: एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: और है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल।
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है। ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा। हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। यानी उसको अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना, समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजार
1: होते हैं।
0: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है, या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है, या संवाद पीछे छूटता जा रहा है
1: और किस तरह का संवाद होता है।
0: है ना? हाँ।
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार,
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है, है ना? और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें इसकी बहुत

0: बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है, तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए। यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि हाँ, ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का। और अब क्या करें
1: जी, अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत बातें हो गई हैं
0: जी, सुनते हैं कि
1: ठीक।

0: तो नेहा मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊं।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
0: जी।
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पर रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय, लेकिन वो काम नहीं आ पाया। तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी
1: नहीं हो पाई
0: तो हमें बहुत बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत

0: सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
1: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है। नेत्रदान महाकल्याण, बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी तो उनकी भी आंखें ले गए और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
1: बहुत अच्छा कार्य किया है और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है और मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
0: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हरेक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: क्या है। सोनाली जी, बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूं तो मैं समझ सकती हूं कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती हैं। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सभी जीवन में यह संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं, और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: कर सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख सके। और जब भी खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां, और साड़ी में जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कार्य के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है। जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियां, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियां पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियां पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरीयुक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है। यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं।
0: क्या बात है।
1: मुझे शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं। उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन

0: बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ न मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दो सखियां सहेलियां यहां पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारे दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो हो हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनके पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना निहा, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है।
1: हाँ।
0: कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही, और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है। कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: बाप रे, दिल की बातें निकल रही है सोनाली जी।

0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं, आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमा

0: ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
1: डेवलप हो जाते हैं.
0: हाँ वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं. तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं वैसा नहीं
1: है. उसे करेला भी दीजिए,
0: उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए. जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी.
1: और हम ऐसे कहते नहीं कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो.
0: हर
1: आप जो खाते हैं
0: थोड़ी
1: सब थोड़ी थोड़ी दो. हाँ अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को. और हम क्या करते हैं इधर, हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं. जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं. और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे.
0: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद.
1: सुनते हैं.

गतित का लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़ दिया
1: संवाद को।
0: वही
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल के उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है
0: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है। सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
1: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
0: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं। इसलिए
1: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी, मैं वही खाऊंगी। क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डाला होता उसमें, और उसमें टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
0: सोनाली जी, मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब हम उन्हें चखाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं।
1: तो ये थोड़ा मुश्किल काम है कि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे।
0: हाँ,
1: और दोस्त
0: तो
1: सहेली ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हदबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है,
0: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
1: और एक साथी लिखती है तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछे मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने के कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं।
0: हाँ सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
1: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले। ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए। उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना चाहिए।
0: हाँ, तो घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है
1: हाँ। अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस
0: ना।
1: नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है।

0: में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है, और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
1: या
0: ये
1: फिर
0: कर लो।
1: खाना तैयार है कि
0: नहीं
1: नहीं, हम आए क्या
0: हाँ
1: डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया। और वो रहनिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है, हाँ हाँ खाना रेडी है, आ जाइए।
0: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
1: और आप क्या करें?
0: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है।
1: तो चलिए गाना सुनते हैं।

कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छीलकर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंचफोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी।

0: छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें। बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें। इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुनें जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है। फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है। पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना, उड़द, जो आपको पसंद है। बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे। बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भूनकर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी, इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले। 5 फोड़न का तड़का दे। बैगन को भून कर निकाले। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले। पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे। थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे। इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है। पूरी, रोटी, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती। मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें?
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़े मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखे। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में।
0: हाँ।
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार।

daqui, सहेली सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
0: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई,
1: रेडियो की तरफ,
0: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूं, तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही।
0: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूं तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
0: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
0: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
0: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए ये कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
0: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
0: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
0: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
0: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
1: जी जी जी।
0: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
0: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते थे तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे,
1: गजब,
0: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
1: जी।
0: या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है
1: जी जी,
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है
1: जी,
0: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं, तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का, तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा,
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ

0: लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर
1: संबंध
0: दूर
1: नहीं
0: से
1: होता
0: रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूं।
1: जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए चार पांच में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान,
1: जी
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी
1: 3 पेज
0: और
1: की
0: तीन पेज
1: चिट्ठी
0: की चिट्ठी,
1: सर्वेश्वर जी
0: और
1: के
0: हाँ
1: पास।
0: उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने
1: लिख
0: सब लिख
1: डाला।
0: दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई, तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं, लौटाई दी, बोला कि ये तू कहता हूँ फालतू काम मत करो, तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित, उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ, तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है,
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहां रहा हूँ, तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है, और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी, और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है,
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है, तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी, क्या बात है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं नहीं मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये यही आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी, तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है, बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा, ये बताओ ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या। तो मैंने कहा नहीं नहीं लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रूपये का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको

0: कुछ कुछ भरोसा हुआ, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी, उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी कि आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
0: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते,
1: जी जी,
0: वो एक गवैया बन जाए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात
1: जी। तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहां हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहां पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहां हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: तीन लाइनों में बात कहता हूं कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा।
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
1: अच्छा।
0: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रूपये, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रूपये का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमैन कौन है जो पोस्टमैन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ, तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो, मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो, कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है, मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक।
0: जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं, फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
1: जी।
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही, मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद

0: जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी जी, तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुनाइए।
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
1: जी,
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी तो मैंने चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी।
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी, आप अगर सुनाए हमारे को तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओह गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाए?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंदर सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे।
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप।
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था, तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग
0: अनकहा
1: नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा।
0: कहता।
1: तो
0: हाँ
1: एक
0: सही।
1: अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है, कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग

0: की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वाली आसिफ साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
1: क्या बात है, वाह।
0: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी।
1: जी जी।
0: तो हम उनकी गजलें सुन रहे थे तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बैंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाता है।
1: जी, तो कोई शेर या
0: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
0: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या कहानी है?
0: क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे तो उनकी जो
1: जनसत्ता के संपादक थे,
0: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक कैरेक्टर आता है तो लोई कहती है कबीर से,
1: जी
0: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले लॉर्ड मैकाले जो कह गया कि सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: कि मैंने कि लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी, जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ बिल्कुल,
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
1: जी जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो कर रहा है। तो अब मैं तुम

0: से कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका आशीष था
1: जी
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
1: जी।
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा
1: कहाँ पर था, किस
0: वेदा कुंभा थिएटर में।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बात के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी, 9 भाषाओं में अब तक
1: मराठी में
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
1: तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी।
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश से नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई, उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता, तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
0: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
1: तो एक कविता है आंसू की खबर।
0: जी सुनाए।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है, गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
0: वाह वाह, मार्मिक कविता।
1: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है।

0: हर कोई जीने लगता है, तीन दिन, तीन बच्चे, एक माँ, एक खबर।
1: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए? हाँ। पान खाएं सैया हमार।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए मतलब... मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात है?
1: तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बनाकर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बनाकर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हॉन्ट करता है।
0: जी जी।
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हॉन्ट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहाँ आपका बचपन,
1: क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी क्या बात है,
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे?
1: देखिए पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
0: जी जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है, मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
0: जी जी।
1: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
1: नहीं नहीं,
0: यहाँ सकारात्मक है।
1: हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
0: जी।
1: हमने क्या कर उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे? तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम लगाने आए हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ
0: सृजन करने आए हैं। जी जी।
1: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
0: नजरिया।
1: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
0: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?
1: पहली बार देखिए मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
0: जी जी।
1: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गईं, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना, उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा, अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ, तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
0: जी।
1: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा, फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से

0: हूँ, तो एक टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
1: जी,
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहाँ
1: जी,
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
1: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप बहुत क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है
1: बिल्कुल,
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है, लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें, और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: कविता माने कविता नहीं रही
1: जी, जी।
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है
1: हाँ।
0: तो वो फिर प्रचार की कविता है, ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
1: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता पर?
0: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, वही सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा
1: जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है, एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपका जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा, तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या बेहतर

0: और मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य जवानी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माँ ही चैनल है। FM बैंड 101.3 MHz की आवृत्ति पर शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे आज की सभा की शेष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो आइए आपको लिए चलते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विवरण की ओर। युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी, तब से कुछ ही देर में यानी ठीक 5:05 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। विविध भारती की मुंबई केंद्र से शाम 5:30 पर और रात्रि के ठीक 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। और शाम के 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला।

ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम बैरानी बात रात्रि के ठीक 8 बजे। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि के 10 बजे। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर और रात्रि के ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

आइए बाबू ले चलते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण की ओर। प्रातः के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। रामचरितमानस गान आपको सुनाया जाएगा 6:30 पर। खेतिनी प्रातः आप सुनेंगे 6:45 पर। 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत और 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन।

कार्यक्रम कुछ दिल से की प्रस्तुति आप सुनेंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे प्रातः के ठीक 9 बजे, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः के 9:10 पर और 11 बजे। 9:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। फिल्म संगीत आपको सुनवाया जाएगा प्रातः के 11:30 पर और 12 बजे से आप सुनेंगे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

अभी कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.3 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुन रहे सभी मेरे साथियों को आपके दोस्त शेफाली कलर का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आइए कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा को जारी करते हैं। दोस्तों आज का विषय है सभ्यता के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों सभ्यता के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 10 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चीन द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाकर इस दिवस की स्थापना की है। इस दिवस के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है कि सांस्कृतिक समझ, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत भेदभाव की समाप्ति भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, जिसमें पूर्वाग्रह और नफरत के को खत्म कर वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना, शांति को बढ़ावा देना, संस्कृतियों के बीच

शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहयोग को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य रहा है। दोस्तों, बदलते विश्व में सभ्यताओं के बीच संवाद की अनिवार्यता को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार है कि वैश्विक विश्व कई परस्पर जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे शांति, विकास, विश्वास और शासन में बढ़ती खाई। मानवता एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है जहां उसे बढ़ती अस्थिरता और परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। एकजुटता, संवाद और सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। सभ्यताओं के बीच संवाद, भेदभाव और पूर्वाग्रह को समाप्त करने, आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देने, राष्ट्र के बीच संबंधों मजबूत करने और वैश्विक एकजुटता को सुदृढ़ करने का सबसे प्रभावी तरीका है। दोस्तों, विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद न केवल मानवता द्वारा साझा किए जाने वाले सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और सराहना को बढ़ावा देता है, बल्कि पारस्परिक सम्मान पर आधारित शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को भी प्रोत्साहित करता है। यह हमारे समय की तत्कालिक चुनौतियों के समाधान के लिए साझा आधार खोजने का एक सेतु है, जो अंततः विश्व शांति, मानव कल्याण, विकास और प्रगति में योगदान देता है। सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभ्यताओं की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संवाद, आपसी सम्मान और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण और परस्पर जुड़ी हुई दुनिया को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, आगे और भी चर्चा जारी रखेंगे, इससे पहले सुनते ही गीत व संदेश।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों इस संदेश के साथ आइए कार्यक्रम में हम हमारी अगली चर्चा को जारी करते हैं। दोस्तों हमारी अगली चर्चा बहुत ही खास दिवस के उपलक्ष्य में है। दोस्तों आज विश्व नेत्र दिवस है जो हर साल 10 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों में मरणोपरांत नेत्रदान करने के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि कार्निया या नेत्रपटल की खराबी से अंधेपन का शिकार हुए लोगों को नई रोशनी मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं कि नेत्रदान से जुड़ी मुख्य बातें किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि समय सीमा, यह मृत्यु के बाद 6 घंटे के भीतर नेत्रदान करना आवश्यक होता है। इसमें आप चश्मा लगाने वाले, शुगर या पीपी के मरीज या मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाए चुके लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। इसमें नेत्रदान के लिए आप भारत सरकार के आसान नंबर जैसे कि 1919 पर कॉल कर सकते हैं। प्रक्रिया केवल कॉर्निया लिया जाता है जिससे आपके चेहरे में कोई खराबी नहीं होगी या प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार से आप भी अगर नेत्रदान करना चाहते हैं या आपके परिवार में कोई नेत्रदान करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। दोस्तों इसके साथ ही हम अगले विषय पर चर्चा करते हैं कि स्क्रीन से किस प्रकार से दूरी बनाए रख सकते हैं और अपनी नींद को प्राथमिकता दे सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन से दूरी बनाना और नींद को प्राथमिकता देना बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कुंजी है। सोने से कम 1 घंटे पहले सभी डिजिटल उपकरण जैसे कि फोन, लैपटॉप को बंद कर दे और अपने बेडरूम को स्क्रीन मुक्त कर रखें। नींद में सुधार और स्क्रीन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ब्लू लाइट से बचे, फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी से आप जो हार्मोन पैदा होते उससे आप बचे जिससे नींद से आने वाली परेशानी होती है। रात में नाइट मोड का उपयोग करें या स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम रखें। आप सोने से पहले 30 या 60 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दे और इसके बजाय किताबें पढ़े, हल्का स्ट्रेचिंग करे या शांत गाने सुन सकते हैं जिससे आपको नींद जल्दी व बेहतर आएगी। अलार्म का उपयोग करें, जैसे कि अपने स्मार्टफोन को रात भर अपने पास या सिर के पास रखने के बजाय एक साधारण से अलार्म घड़ी का उपयोग करें ताकि आप उठते ही मोबाइल को न देखें और रात को बार बार पास रहने के कारण जो मोबाइल देखने की आदत होती है उससे बच सकते हैं। नोटिफिकेशन बंद रखें। यदि आपके पास फोन रखना मजबूरी हो तो रात में सोने से पहले आप साइलेंट मोड पर रख सकते हैं या डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड पर करके ही सोए ताकि वो बार बार नोटिफिकेशन आए और आपको बार बार फोन छूने की आदत ना लगे।

स्क्रीन की लत को समझे, अपने फोन के यूजर डाटा को ट्रैक करें ताकि आपको यह पता चल सके कि आपके स्क्रीन पर कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप दिन में समय काम करते समय हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी किसी वस्तु को देखें ताकि आंखों पर दबाव न पड़े। ऐसे ही कुछ बातों को ध्यान रखकर आप आपके स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं ताकि आपकी नींद को, जो पर्याप्त नींद को आपको प्राथमिकता देनी होगी उसको दे सकते हैं और आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं गीत।

दोस्तों इस गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम विवाणी समाप्त करने का। इजाजत दीजिए आपके दोस्त शिफाली कलल को कार्यक्रम विवाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी युवा श्रोताओं ने सुना उनका अपना कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

नमस्कार आप सभी को सविता सिंह का। शुरुआत कर रहे हैं इस गाने से। फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। तो जन्नत

कुमार राठौर की आवाज में जयदीप साहनी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। सलीम सुलेमान की तर्ज थी फिल्म का नाम, रब ने बना दी जोड़ी। अब लीजिए सुनिए रूप कुमार राठौर की आवाज में ही जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीतकार अनु मलिक, फिल्म का नाम बॉर्डर।

बॉर्डर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रूप कुमार राठौर की आवाज थी, जावेद अख्तर के बोल थे, अन्नू मलिक का संगीत था। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

गीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें थी। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए आंगन की कली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शैली शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और बप्पी लहरी ने धुन बनाई है।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में आपने समीर का लिखा हुआ गीत आप सुना, अन्नू मलिक का संगीत था और फिल्म का नाम सोल्जर। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय, इसका शेष भाग आप सुन सकेंगे 6:05 पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के

0: चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में राहत इंदौरी का लिखा गीत आप सुन रहे थे। अनु मलिक का संगीत था और फिल्म का नाम था खुद्दार। अब लीजिए सुनिए ये गाना।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजी थी। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और इसी गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आगे दीजिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज की शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक अवसर को देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को राष्ट्रीय यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग बताया है। इस उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी विकास योजनाओं और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बनाने के दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बैठक में शिरकत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री के सम्मान में आज एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि को 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास का प्रतीक बताया।
2: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140

0: करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी के राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन्हें पत्र लिखकर 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा कि श्री मोदी की नीतियों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आधुनिक स्वरूप मिला है। इस उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में देवस्थान विभाग की ओर से विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई।
2: ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सुदा शास्त्री यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युर्षगं समान आयु प्रमुखी।
1: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है।
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों गरीबों किसानों पशुपालकों युवाओं महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
1: इस उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी रखे गए। प्रदेश भर से विभिन्न नेताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। प्रगतिशील किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लमोरिया ने भी राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को अनुकरणीय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री वैष्णव आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वे एमएनआईटी भी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास सुशासन और जनहित कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज जयपुर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं जो राज्य के 94% क्षेत्र को कवर करते हैं। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। प्रसार भारती के चेयरमैन पद्मश्री प्रसून जोशी भी जयपुर पहुंच गए हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 168 मेगावाट क्षमता का ये केंद्र गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। ये दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक होगा जहां उत्पादों और एआई क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने

0: पे क्रैकडाउन कर दिया, कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। इसे करीब 1,359 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बीओटी मॉडल यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पर विकसित किया जाएगा। इससे नागौर और बीकानेर के बीच संपर्क बेहतर होगा, साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से उत्पादन इसी महीने शुरू होने के आसार हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकेंगे। मुख्य

निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकेंगे। मुख्य सचिव आज दिल्ली से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल रिफाइनरी के एलपीजी और अन्य उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक यहां से 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल सालाना रिफाइन किया जा सकेगा। उन्होंने रिफाइनरी उत्पादनों की बिक्री संभावनाओं को तलाशने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए। जयपुर खो नागोरियान पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में थानाधिकारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने इस भीषण अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं पुलिस टीम ने इलाके में सर्च अभियान चलाते हुए अब तक 5 अवैध पटाखा फैक्ट्री गोदामों को सील किया है। हादसे के बाद इस क्षेत्र में की गई कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, मशीनें और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच एफएसएल टीम मौके से नमूने इकट्ठे कर मामले की जांच कर रही है। राज्य में मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। अधिकतर हिस्सों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं दिल्ली और हरियाणा से सटे राज्य के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ धूल भरी आंधी चली। अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कई इलाकों में बारिश भी हुई। इस बीच श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी, फलौदी, बीकानेर और जैसलमेर में दिन के पारे में उछाल आने से लू का सबसे अधिक असर रहा। इन स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। राज्य में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से 14 जून तक तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसी दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। विभाग ने इन संभागों के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी। और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ूला ने तैयार किया है। जल संरक्षण से विकास तक प्रशासनिक सक्रियता और जनभागीदारी का एक अनूठा संगम बीते माह जिले में देखने को मिला। एक तरफ राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचा, तो दूसरी ओर जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े अभियानों में आमजन की भागीदारी भी बढ़ती नजर आई। इस दौरान मौसम ने भी कई रंग दिखाए। मई के अधिकांश दिनों में तेज गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया, लेकिन जून की शुरुआत में आंधी, बादल और हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कुल मिलाकर बीता महीना सलूम्बर में विकास कार्यों, धार्मिक आयोजनों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सक्रियता के नाम रहा। भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक पेयजल की समस्या कई जगह सामने आई। ऐसे समय में प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना रही। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने

0: विभिन्न पेयजल योजनाओं, जलाशयों और हैंडपंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी गांव में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। इस बीच जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सबसे बड़ा और चर्चित अभियान बनकर उभरा। 25 मई से 5 जून तक चले इस अभियान के तहत जिले भर में जल चौपाल, श्रमदान, पौधरोपण, साइकिल रैली, जल स्रोतों की साफ सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरणी नदी, जयसमंद झील, कमल तलाई और विभिन्न गांवों की बावड़ियों और तालाबों पर सफाई अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन का प्रयास था कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम रहने के बजाय जन आंदोलन का रूप ले। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठन, विद्यार्थी, महिलाएं और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इन गतिविधियों में शामिल हुए। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां पूरे महीने चलती रहीं। जिले में संचालित 10 नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए गए। पंचायती राज विभाग को 6 लाख, शिक्षा विभाग को 4 लाख और वन विभाग को 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई और जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए। एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ लोकतंत्र के नाम जैसे अभियान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने और बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहलें हुई। टीबी मुक्त भारत अभियान, एचपीवी वैक्सीनेशन, डेंगू जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग ने योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। वहीं जिले में अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन शटर डाउन की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान के तहत बिना पंजीकरण और बिना डिग्री संचालित क्लिनिकों, झोला छाप डॉक्टरों और अवैध जांच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी संस्थानों में योगाभ्यास का सिलसिला चल रहा है। जैसमन की पाल और सेलिंग तालाब पर नियमित योग किए जा रहे हैं। जिला कारागृह में बंदियों के लिए योग कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रशासन और आयुर्वेद विभाग का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुँचाना रहा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहा। जैसमंद की पाल स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी लोगों ने देखा। इसके अलावा विभिन्न गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, कथा, भजन संध्या और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी रही। ईद उल अजहा पर भी लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। सलूमर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सब लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बनिया। ये उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल हमारा मान माय प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माय शिरकत करण रो कार्यक्रम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी। हर पचपदरारी तेल रिफाइनरियों इनी महीना उत्पादन शुरू है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। श्री नरेंद्र मोदी देश में सब लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बन क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी ने इस आरोप बधाई दीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति इन देश की जनता रा वारी अगुवाई में अटूट भरोसा रो सबूत बतायो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वारा बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी रा इन कार्यकाल ने देश में बदलाव लावण वालो जमानो बतायो। इस मौके आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए री नई दिल्ली में खास मीटिंग रखी थी। मीटिंग में एनडीए गठबंधन रा सदस्य दल और भारतीय

0: भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता मौजूद रहा। इस दौरान देश रा विकास रा न्यारा न्यारा कार्यक्रम और बुनियादी योजनावां सागे साल 2047 ताई देश ने विकसित बनावन रा नजरिया रो जायजो लियो चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही मीटिंग में शामिल थिया। केंद्रीय मंत्रिमंडली प्रधानमंत्री मोदी रा मान में आज एक प्रस्ताव पास कर वन ई उपलब्धि सारू बधाई दीनी। मंत्रिमंडल री मीटिंग पाछे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में एक खबर नवीसा ने इनरी जानकारी दीनी। वे प्रधानमंत्री री ई उपलब्धि ने देश री 140 करोड़ जनता रा भरोसा री निशानी बतायो।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही प्रधानमंत्री मोदी रा लाडला 12 साल रा बेहतरीन कामकाज सारू वन कागज लेकर राज्य री 8 करोड़ जनता री ओर शुभकामनावां दीनी है। मुख्यमंत्री खत्माई मांडियो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में प्रदेश ही विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प साचो करण ओली बढ़ रियो है। ई मौके आज देवस्थान विभाग री ओर आखा राज्य में खास पूजा अर्चना कर खुशहाली री कामना करी ची।
2: ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सुदा जास्ती यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बुद्धिर्षगुं समान आयुः प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पाली माय कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली एनडीए सरकार हर हलका और हर तबका रा भला सारू काम कीनो है।
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: ई मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में राखी छिया। देश परदेश न्यारा न्यारा नेतावां और संगठन नारी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने आ उपलब्धि हासिल करन पर बधाइयां और शुभकामनावां मिल रही है। प्रगतिशील किसान यूनियन रा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लामूरिया ही देश सेवा सारू समर्पित प्रधानमंत्री मोदी रा व्यक्तित्व ने अनुकरणीय बतायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नई दिल्ली में नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग री सदारत करण रो कार्यक्रम है। राष्ट्रपति भवन में भवन वाली मीटिंग रो खास मुद्दों 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास राखी जियो है। मीटिंग में उद्यमिता और कौशल विकास ने बढ़ावो देवन और देश में काम धंधा रा स्थायी मौका मुहैया करावन रे बारे में विचार करियो चावेला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल जयपुर पधारण रो कार्यक्रम है। वे आकाशवाणी परिसर जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट बूतारा एफएम ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करेला। इस आगे प्रदेश माए एफएम ट्रांसमीटर री तादाद 39 हो जावेला। फिलहाल राज्य में आकाशवाणी रा 38 केंद्र है जो प्रदेश रा 94% हलका ताई पहुंचे है। श्री वैष्णव रो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो करण रो ही कार्यक्रम है। ई पाछे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए कृषि अनुसंधान केंद्र माए रख्या जावन वाला विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल भेला। इरे जरिए देश माए लाडला 12 साल माए भिया ऐतिहासिक विकास सुशासन और जनता रा भला रा कामारी जानकारी समाज रा हर तबका ताई पुकाई चावेला। केंद्रीय मंत्री प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए राखे जावन वाली प्रेस वार्ता नहीं संबोधित करेला। प्रसार भारती रा अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जयपुर पथार किया है। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार जैनी आज जयपुर पधार्या। अमरीकी कंपनी मेटा गुजरात राज जामनगर में मारो पहलो एआई सक्षम डेटा

0: ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਰਾਇਲ ਆਨਕੀਨੋ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਵੱਧੀ ਹਲਚਲ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫੈਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਔਰ AI ਜੁੜਿਆ ਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਾਰੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰ ਰੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਓ ਚਾਵੇਲਾ। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਆਪ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੈਪੁਰ ਅਜਮੇਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋ। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो है कि देश में CNG री कोई कमी नहीं है। वह कहो कि घरां ताई पाइपलाइन जरिए ही रसोई गैस रिपूर्ति करी जा रही है। शिपुरी कहो के LPG कनेक्शन में PNG कनेक्शन में बदलने की कोशिश करी जा रही है। केंद्रीय मंत्री कहो के कुछ लोग गलत जानकारियां देर दुनिया रा मौजूदा हालात रो फायदो उठावन की कोशिश कर रहा है।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनाने का काम न मंजूरी दे दी है। इनमें करीब 1,359 करोड़ रुपए बत्ता खर्च बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल मथे विकसित करो चावेला। इन नागौर और बीकानेर बीच जुड़ाव बेहतर वेला। बालोतरा जिला रा पचपदरा री राजस्थान रिफाइनरी उत्पादन इन्हीं महीना शुरू होवन रा आसार है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो का इनो प्रदेश में निवेश नौकरी धंधा और आमदनी रा नुआ मौका बनेला। मुख्य सचिव आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम रा एहलकारा सागे वर्चुअल तरीका राखी जी मीटिंग में बोल रहा है। वह कहो के HPCL रिफाइनरी रा LPG और दूजा उत्पादन ने बत्तम बत्ता काम ने उन्हों तय करो चावेला। मुख्य सचिव बतायो के 8 सालाना 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल री सफाई करी जा सकेला। जयपुर रा खो नागोरियान हलका माए पटाखा बनावन राय कारखाना माए काल लाई लागण हुई मौताना मामला माए 1 ASI समेत 9 पुलिस वाला ने मुअत्तल कर दिया चिया है। पुलिस इन हलका माए जांच रो अभियान चलार गैर कानूनी तौर चल रही 5 पटाखा फैक्ट्रियां और गोदाम ने सील कर दी ना। हादसा पाछे इन हलकाओं मोटी तादाद माए बारूद मशीना और दूजी विस्फोटक सामग्री बरामद करी ची। FSL री टीम मौका नमूना भेड़ा कर मामला री जांच कर रही है। रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्यालय और अजमेर मंडल ने बेहतरीन काम सारू उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देर नवाजो है। अजमेर मंडल रा रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा बतायो कि मंडल ने डिजिटल पहल HRMS आदर्श एडॉप्शन डिप्लॉयमेंट और री इन्वेंटिंग ऑफ सर्विसेज रातेत रेल सेवा ने आधुनिक पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल बनावन सारू नवाजी चियो है। हनुमानगढ़ में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावां की परेशानी आगे करण सारू 12 जून ने पूर्व सैनिक समस्या समाधान शिविर लगायो चावेला। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बतायो कि शिविर में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावां री पेंशन स्वास्थ्य सेवा और दूजी सरकारी योजनावां जुड़ी समस्यावां मौके ही निपटावन री कोशिश करी जावेला। रबे मौसम राज्य रा घनखर हलका माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। श्रीगंगानगर चूरू पिलानी फलौदी बीकानेर और जैसलमेर माए 44-46 डिग्री सेल्सियस तापमान बीच लू रो घणो असर रहो। दूजगाने दिल्ली और हरियाणा लाग्योड़ा राज्य रा कुछ हलका माए बादला मनबासा गए आंधी चाली। अलवर हनुमानगढ़ झुंझुनू और भरतपुर रा कई हलका माए बारिश हुई। मौसम विभाग बीकानेर अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हलका माए काल 14 जून ताई जोरदार बायरो बजन सा गए कठे कठे बादला ने गाज और बिजली ने चमक बीच बिखा वेवन रा आसार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून दीतवार ने विचार बतावेला। इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला।

0: आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 मत 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजो सुन ले रहो सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सब लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवन वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माए प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माए शिरकत करेला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ना 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी। और पचपदरा री तेल रिफाइनरी इनी महीना उत्पादन स्वरूप हेवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। शाम के 7 बजे है और सुनिए कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड। पाइए सीमलेस बैंकिंग के साथ और भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और एक्टिवेट करें SBI प्रीमियर बैंकिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: ग्राम भारती कार्यक्रम ने सुनबड़ा सगला हेतालु श्रोतागणा ने थाकी बहन मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा। ग्राम भारती कार्यक्रम जी में आपा बाता करा हां, रोज नित्य नया होवाला नवाचारा रिये महत्वपूर्ण विषयारी। आज आपा बात कराला आपना जीवन से जुड़िया एक घणो महत्वपूर्ण मोटो विषय माते जी ने थे मारी आप पक्तियां सु ही समझ जाओ लासा। धरती रो श्रृंगार है पेड़, जीवन रो आधार है पेड़, प्राण वायु जो माने देवे छे वो ईश्वर रो उपहार है पेड़। कटता जंगल रोती धरती, नदियां भी अब सूखन जावे छे, मौसम रो बिगड़तो यो चक्र हरियाली आपने से रूठती जावे छे। उठो जागो करो विचार, सह न सकेगी अब आपनी प्रकृति या वार। हर आंगन हर एक डगर माए आओ रोपा आपा पौधा हजार, थे भी लगाओ मैं भी लगाऊं मिलकर आपा सगड़ा यो संकल्प उठावा। सुनी होती धरती ने आओ सगड़ा रल मिल फेर सु स्वर्ग मनावा, पेड़ लगावा और अपना पर्यावरण ने बचावा। आज के आधुनिक युग में जड़े आपा तकनीकी और विकास की नई नई ऊंचाइयां ने तो छूरिया हां, लेकिन वटे ही आपनी प्रकृति और पर्यावरण आपने से दूर होता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण आपने जंगलारी आपा घनी कटाई कर रहे हां। ईरो सीधो असर आपने पर्यावरण पर भी पड़ रहे है सा। देखो आपा सगड़ा जो लोग हां, कठे ने कठे आपा सगड़ा खेती के क्षेत्र से जुड़ेड़ा हां, यो जो आपने ई टाइम पेड़ा की कटाई बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, ईरो घणो मोटो सर आपनी खेती पर भी देखो जावे है। खेती के साथ में ही पर्यावरण जो असंतुलित हो रहे है जिसके कारण आपने वर्षा में कमी आ रही है, गर्मी कटे कटे बहुत ज्यादा कटे कटे घनी कम पड़ रही है, यो जो असंतुलित माहौल हो रहे है ऐसा में पेड़ लगावा और पर्यावरण न बचावा यो केवल एक नारो ही कोनी रह गयो है, बल्कि आपने जीवन में आपने अस्तित्व न बचावा की सबसे बड़ी आज के टेम में आवश्यकता बन गो है सा। आपने वायुमंडल में जो हानिकारक गैसा हुए है वाने सोकर पृथ्वी को जो तापमान हुए है वीने भी पेड़ कोनी बढ़वा दे। वर्षा रो आपना जो पेड़ है वह आधार है, जड़े जता ज्यादा पेड़ हुआ करे है वड़े वत्ती ही चोखी बरखा पड़िया करे है, जिसे आपने जो सूखा की समस्या है वह कम हुआ करे है। और ई बात ने आपने राजस्थान में सगड़ा प्रदेशवासी

0: तो चौकी दरिया जाने हैं और अपनी पुष्टा ने देखता आ रहा है। वे यही सोचा करता कि जत्ता पेड़ आपा काटा वीकी बत्ता दोगुना आपा लगावा, जिसे जो संतुलन है पेड़ा को वो बनो रहे। ऐ जो बड़ा बड़ा कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया है आपने आस पास और पेड़ की कमी होती जा रही है, इको जो असर आपने अवार ही ई टेम पर ही देखने मिल रहा है कि पहले का टाइम पर आपने बड़का का टाइम पर आप देखा करता कि जो तापमान मौसम को अबार अतो तेज गर्म हो रहा है वो तो पहली को नहीं रहा करतो, पहली छावन रहा करती है पेड़ारी छावन। हर घर के आस पास एक दो पेड़ तो लागेड़ा हुआ ही करता सा। कोई भी मुसाफिर भटक्या करते हो अगर ढाणी में मोहल्ला में गली में विनय खड़ा होबा के लिए छाया मिला करती ही पेड़ की। और आज आपा गली मोहल्ला में चला कर रहा तो देखा हाँ कि दूर दूर तक धूप ही धूप आपने तावड़ो ही तावड़ो नजर आवे है सा। आपने पर्यावरण की रक्षा रख खातिर जो जरूरी को नहीं सा कि आपा बड़ा बड़ा वादा करा, बल्कि छोटा छोटा कदम आपा ने ई टेम उठावारी जरूरत है। आपा ज्यादा ज्यादा पेड़ लगावा, जी हाँ अपने घर में कोई भी टावर टीकरा रो जन्मदिन आवे शादी की सालगिरह आवे तो ई खुशी का मौका पर आपा खुशी से एक पेड़ लगावा सा। और पेड़ लगानो ही काफी ना है, वी की जिम्मेदारी उठावा, देखभाल करवारी, वी में टेमो टेम पानी दे बारी, खाद बीज दे बारी, जिससे कि वो पेड़ फले और फूले भी सा। यानी आपा लगाड़ छोड़ दिया फिर अगले जन्मदिन पर भी पेड़ ने झाक रहा हाँ, तो फिर वो तो आपने कठे मिल सी सा। बीके सागे ही आप आस पास के आपने जो टावर टिकर अपनी आवाड़ी जो पीढ़ी है वी ने आप समझावा कि पेड़ आपने जीवन रो मूल आधार है, ई प्रकृति के बिना ई धरती माते जीवन संभव को नहीं सा। तो आपने ई प्रकृति ने ई धरती ने ई प्रकृति से जुड़ा हर एक उत्पाद ने चाहे वो पेड़ हो चाहे वो पशु पक्षी हो सब ने आपने संजोर रखनो है। पर्यावरण के बारे में बाता चीता करता करता चाला आप सगला रणमिल सुन लेवा ईश्वर से जुड़ियो आपने लोक देवताओं से जुड़ियो एक लोक संगीत सा।
1: अरे रूनू तेरा धनी।

वार आपा सगळ्या सुण्या सा स्टूडियो री घड़ी मने यानी कि था कि बहन मनस्वनी ने इशारो कर रही है कि चाल बारो टेम हो चालियो है। तो आज के कार्यक्रम में इतो ही मने यानी मनस्वनी ने दो विदा चाला और करा राम राम सा।

श्रोताओं भी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम भारती। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमीर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं और आपसे बस थोड़ी देर में सुनिए दिल्ली केंद्र से सीधा प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: श्रोताओं में आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमिर शरद से बोल रहे हैं और आप सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड। पाइए सीमलेस बैंकिंग के साथ और भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और एक्टिवेट करें SBI प्रीमियर बैंकिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड। पाइए सीमलेस बैंकिंग के साथ और भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और एक्टिवेट करें SBI प्रीमियर बैंकिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: खेतीबाड़ी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगड़ा काश्तकार भाया ने और धाणिया में काम करती सगड़ी बहनावा ने थाकी बहन मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा। खेतीबाड़ी कार्यक्रम जी मैं आपा बाता करा हा खेती और किसानारी वहां से जुड़े नवाचारारी और समस्यावारी। आज आप बात कराला हरित गृह प्रबंधन यानी कि ग्रीन हाउस मैनेजमेंट के बारे में। ई विषय पर जानकारी देवा के खातिर आपने सागे पधार चुका है डॉक्टर राजेश कुमार सैनी जो कि हरित गृह विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब ठाको मां के स्टूडियो में घणो मानसू
2: स्वागत है सा। राम राम सा।
3: राम राम।
2: डॉक्टर साहब थासू सैसू पहले जानना चाहूंगा कि यो जो हरित गृह प्रबंधन हरित गृह हुआ करे है ग्रीन हाउस जी ने कह रहे हैं जो ग्रीन हाउस काई हो रहे है और ग्रीन हाउस आपने ई प्रदेश में कितना प्रकार का हुआ करे है सर।
3: किसान भाइयों, ग्रीन हाउस का मतलब होता है लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा ढांचा जो कि पारदर्शी आवरण से ढका होता है। पारदर्शी आवरण का मतलब हो गया जिसमें सूर्य की किरणें सीधी प्रवेश न करकर छन कर अंदर आती है और जिसके अंदर वायु का आवागमन, प्रकाश की तीव्रता, CO2 का लेवल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तापमान, इन सब चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है और उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उनसे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाता है, इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर ढकने के लिए आपने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया, विशेष प्रकार की पॉलीथीन होती है उसका इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है पॉली हाउस। अगर ढकने के लिए आपने शेड नेट का इस्तेमाल किया, चाहे वो सफेद रंग की हो या हरे रंग की हो, तो नामकरण हो जाता है शेड नेट हाउस। और ढकने के लिए अगर नेट का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है नेट हाउस। और ढकने के लिए आप ग्लास का इस्तेमाल करते तो नामकरण होता है ग्लास हाउस। और आमतौर पर ग्लास हाउस पर्वतीय क्षेत्रों में या विदेशों में पाए जाते हैं, हमारे यहाँ प्रयोगशाला तक ही सीमित है। प्रदेश के अंदर नेट हाउस, शेड नेट हाउस और पॉली हाउस और एक विशेष प्रकार का जो हाईटेक ग्रीन हाउस होता है जिसको फैन पैड सिस्टम वाले ग्रीन हाउस बोलते हैं, ये हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं। और आमतौर पर ये शेड नेट के अंदर और नेट हाउस के अंदर और पॉली हाउस के अंदर हमारे किसान भाई ज्यादा प्रचलन में है ये, और इनमें खेती करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो ये अपना ग्रीन हाउस हुआ करे है इको उपयोग अपना काश्तकार भाई क्यों कर करे, इनमें काई ऐसो फायदो है जो इको उपयोग आपने काश्तकार भाई ने करना चाहिए जैसा।
3: किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें तापमान, प्रकाश की तीव्रता, वायु का आवागमन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये कुछ चीजें हैं जिनको हम नियंत्रित कर पाते हैं। तेज गर्मी से, तेज सर्दी से, बरसात से हम अपने पौधों को बचा पाते हैं, उनको संरक्षण प्रदान कर पाते हैं और उनसे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और 8 से 10 गुना ज्यादा उत्पादन खुले की अपेक्षा, खेती की अपेक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हम फूलों की खेती कर सकते हैं, डच गुलाब लगा सकते हैं, जरबेरे लगा सकते हैं, कट फ्लावर की खेती की जा सकती है, नर्सरी तैयार की जा सकती है।

0: इसमें आप सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, आयुर्वेदिक पौधे तैयार कर सकते हैं, जंगलात के पौधे तैयार किए जा सकते हैं, फल वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं और फूलों वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा बेमौसमी सब्जियों को लगाकर आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं क्योंकि इसमें मुनाफा है।
1: डॉक्टर साहब, या तो आपा बात करे मुनाफा री की भाई आपने ग्रीन हाउस लगा बसू कहीं कहीं फायदो हो सके हैं। डॉक्टर साहब, अब थासू यू जानबो चाहूंगा कि जो ग्रीष्म ऋतु हुआ आपने या तावड़ आपने प्रदेश में घूम पड़े है और सर्दी भी कई जगह जो है घनी अच्छी दिखी जावे है और बरखा रहे जो आप बात करा बरखा री, तो आपने प्रदेश में कड़े तो बहुत चोखी बरखा देखी जावे है, कड़े बरखा बहुत कम हुआ करे है, तो ई जो वातावरण को जो बदलाव है इन्हें क्या पॉली हाउस में या ग्रीन हाउस में क्या नियंत्रण करे अपना काश्तकार भाई जो वहाँ के लिए उपयोगी हो?
0: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि गर्मी हमारे प्रदेश में राजस्थान के अंदर बेहद ज्यादा पड़ती है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर हमारे कुछ आदान होते हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। पॉली हाउस की छत पर स्पेशल तरीके के फवारे लगे होते हैं जिनको ओवरहेड स्प्रिंकलर्स कहते हैं, इनको हमको समय समय पर चलाना होता है जिससे छत ठंडी होती है और छत अंदर ठंड ऊपर ठंडी होगी तो अंदर भी ठंडक आएगी। दूसरा शेड नेट हाउस हो गया, नेट हाउस हो गया और अपना पॉली हाउस हो गया, इसके अंदर कुछ फवारे लगे होते हैं, चार मुंह वाले या दो मुंह वाले फवारे होते हैं जिनको हम फॉगर्स कहते हैं, इनको भी समय समय पर चलाया जाता है जिससे अंदर आर्द्रता बढ़ती है, तापमान कम होता है। तेज गर्मी से निजात पाने के लिए प्रकाश की तीव्रता को कम करना आवश्यक तो होता है, इसमें हम ऊपर जो स्क्रीन लगी हुई होती है जो शेड नेट होता है चाहे वो हरे रंग का हो या सफेद रंग का हो, आमतौर पर हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है 50% वाला होता है, उसको हम फैलाते हैं जिससे प्रकाश की तीव्रता को काफी हद तक हम कम कर पाते हैं, 50% कम हो जाती है और वो हमारे फसल के लिए उपयोगी होता है। और अंदर हम देखते हैं कि मल्च का इस्तेमाल करते हैं, उठी हुई क्यारियों पे हम जब खेती करते हैं तो उसमें ड्रिप लाइन बिछाई जाती है, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र बिछाया जाता है, उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप की फिल्म चढ़ाई जाती है जिसको कि हम मल्च बोलते हैं, प्लास्टिक मल्च बोलते हैं। ये दो रंग वाली होती है, एक तरफ इसके चांदी कलर होता है, एक तरफ काला होता है। गर्मियों के दौरान जब हम इसका उपयोग करते हैं तो चांदी कलर को हम ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि जो है प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सके, गर्मी बढ़ाए नहीं हो, रिफ्लेक्शन के द्वारा गर्मी को कम कर दे। और वही अगर सर्दियों का पीरियड है तो हम काली वाली जो फिल्म है उसको ऊपर रखते हैं ताकि वो उसको गर्मी को अब्जॉर्व कर ले, उसको सोख ले और जो जड़ों के आसपास है तापमान को बढ़ाए। तो ये चीजें हैं इसमें हम कर सकते हैं। और सुबह जल्दी हम पर्दे खोल देते हैं गर्मियों में ताकि ताजा हवा अंदर आ जाती है, ताजा हवा हमेशा ठंडी होती है, गर्म होने के बाद में अंदर जाके गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद हल्की होकर ऊपर से निकल जाती है जिसको कि हम वेंट बोलते हैं, वेंटिलेशन के लिए होता है, एक इस तरीके का वायु चक्र चलता है। इसलिए हमारे जो पॉली हाउस हम यहाँ पे लगाते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिकली नेचुरली वेंटिलेटेड ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस, ये नामकरण भी इसका इसी हिसाब से। और शाम को हम इसको लेट बंद करते हैं, सुबह जल्दी खोलते हैं पर्दों को और शाम को लेट बंद करते हैं। सर्दियों में हम लेट खोलते हैं पर्दे, 9-10 बजे खोलते हैं और शाम को 3-4 बजे ही इसको बंद कर देते हैं ताकि गर्मी अंदर ट्रैप हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं, बरसात के दौरान हम पर्दों को बंद करते हैं ताकि बरसात का पानी अंदर ना आ सके। तो ये एक प्रकार का ढांचा है जिससे हम पौधों को संरक्षण प्रदान करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये जो ग्रीन हाउस हुआ करे है इनमें कौन कौन सी फसला है जो आपका काश्तकार भाई उगा सके है, मुनाफो कमा सके है साहब?
0: किसान भाइयों, खास बात ग्रीन हाउस की यह है कि हम बेमौसमी सब्जियां लगा सकते हैं इस पे। और आम तौर पे जो लगाई जा रही है हमारे प्रदेश के अंदर वह है शिमला मिर्ची, रंगीन शिमला मिर्ची, हरे रंग की है, लाल रंग की है, पीले रंग की है, नारंगी कलर की है, बैंगनी कलर की है। और इनका उपयोग आजकल फास्ट फूड पे काफी चलन में है, जो शहर के नजदीक है वो वहां पे इसकी काफी मांग है, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में, जयपुर में इसकी अच्छी खासी मांग है। जैसे कि आप सब जानते हैं सबसे बड़ी मंडी दिल्ली के अंदर है आजादपुर मंडी, वहां पे इसकी अच्छी खासी मांग है। जयपुर में भी इसके आउटलेट्स हैं, वहां पे बिकता है, अच्छे दाम मिलते हैं इसके। इसके अलावा बेल वाले टमाटर लगा सकते हैं आप। और प्रदेश के अंदर आजकल तो ज्यादा बीज रहित खीरा उगाने का चलन है क्योंकि वर्ष में 3 बार इसकी फसल ली जा सकती है और कम समय में ही लगभग 35-40 दिन में ही बीज रोपण के पश्चात प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तो अच्छा मुनाफा होता है। बेमौसमी सब्जियां हैं, उस समय बाजार में किसी प्रकार की कंपटीशन नहीं होता है तो किसानों को अच्छा भाव मिलता है। वहीं मैं कहूंगा कि फूल वाली फसलें भी लगा सकते हैं आप, जैसे डच गुलाब हो गया, जरबेरा हो गया, इन सबको लगा के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कटफ्लावर आजकल काफी चलन में है।
1: डॉक्टर साहब, या तो थे बताया कि कौन कौन सी फसला है जो अपना काश्तकार भाई ग्रीन हाउस में लगा सके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब

0: जो ग्रीन हाउस अपना काश्तकार भाई जी यहाँ लगा लिया है ना, तो भी के पाछे वे विने किया भी की साल संभाल कर ले, किया भी ने रखे जिसे कि वो जल्दी खराब ना हुए, बार बार खर्चो ना कर सके, खर्चो ना मांगे, तो वी के लेके कर सके।
1: किसान भाइयों, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो पॉली हाउस बनते हैं इसमें जो पॉलीफिल्म होती है, विशेष प्रकार की पॉलीफिल्म होती है, इसमें कई गुण होते हैं, तो ये गुण जो है समय के साथ इसमें कमी आती है और इसकी एक आयु सीमा है वो 3 से 4 वर्ष तक ये चलती है, उसके पश्चात इसको बदलना पड़ता है। वहीं अगर हम ढांचे की बात करें, स्कल्टन की बात करें पूरे ढांचे की, तो ढांचा 15 से 20 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि ये जीआई स्ट्रक्चर होता है, गैल्वनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर होता है। परंतु मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों, ग्रीन हाउस की सही देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही देखभाल करते तो आकस्मिक जो खर्चे होते हैं, अचानक जो खर्चे आ जाते हैं, उससे काफी हद तक आप उससे निजात पा सकते हैं। जो आपका जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें जो आपके फिल्टर्स होते हैं, आमतौर पर वो फिल्टर्स चौक हो जाते हैं, उसको समय समय पर सफाई करनी पड़ती है, और जिसमें आप सैंड फिल्टर हो गया आपका, फिर आपका डिस्क फिल्टर हो गया, इनको सफाई करें। और ड्रिप लाइन जो होती है उसमें ड्रिपर्स होते हैं जहां से पानी बूंद बूंद करके बाहर निकलता है, उसमें भी कई बार क्या होता है साल्ट इकट्ठे हो जाते हैं, नमक, क्योंकि अपने जो पानी है उसमें फ्लोराइड ज्यादा है, धीरे धीरे ये साल्ट उसमें जमा हो जाते हैं। जो काले रंग की जो पाइप होती है जिसको हम लैटरल्स कहते हैं, उसमें भी पानी ये साल्ट इकट्ठे हो जाते हैं। तो समय समय पर हम ये भी कहते हैं कि भाई आपको एसिड ट्रीटमेंट का उपयोग करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, यो तो थे बताया कि भाई अपना काश्तकार भाई जो है अगर वो ग्रीन हाउस लगा ले वे अपने खेता माए तो किया भी को रख रखाव करे, लेकिन डॉक्टर साहब जिया अपना काश्तकार भाई है वे अगर जानबो चाहे कि देखो भाई आपने कितनी 10 बीघा जमी है, 5 बीघा जमी है, तो मतलब एक अनुमानित लागत आपा अगर समझना चाहवा तो वो कहीं रहे है सा ग्रीन हाउस ने।
1: देखिए, आपको इसके लिए आपको नजदीकतम जो आपका उद्यान विभाग है वहां पे संपर्क साधना चाहिए और वहां पे आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि समय समय पे इनके जो रेट्स है वो बदलते रहते हैं। इसलिए आप नजदीकतम आपके उद्यान विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। और मोटा मोटा अगर हम बात करें तो लगभग 1000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के आसपास आप गणना के हिसाब से रख सकते हैं। बाकी लेटेस्ट जो है वो अपडेट के लिए आपको उद्यान विभाग में संपर्क करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब जिया अपना जो काश्तकार भाई है वह ग्रीन हाउस लगा लेवे तो ऐसी कौन सी मोटी चुनौतियां है जाको सामनो सबसे ज्यादा काश्तकार भाई ने करना पड़े है जब वह ग्रीन हाउस लगा लेवे?
1: किसान भाइयों, सबसे पहला आप कोई नई तकनीक अपनाते हैं तो सबसे पहले उसको जरूरत होती है उसको सीखने की। ग्रीन हाउस तकनीक भी आधुनिक तकनीक है, इसको सीखना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं कहूंगा कि आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी है। तो प्रशिक्षण समय समय पर उद्यान विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसमें आप नामांकन कीजिए और उसका लाभ उठाइए। दूसरा क्या है कि आपको अनुदान भी सरकार के द्वारा दे है, तो अनुदान का लाभ उठाकर बैंक लोन लेकर आप ये कर सकते हैं। स्वरोजगार के आपको बेहद इस पे चांसेस हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं आप, इसमें मालिक बनते हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और अंत में तो मैं ये कहूंगा कि आप ग्रीन हाउस की खेती जो है मुनाफे की खेती है, और आओ ग्रीन हाउस लगाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं।
0: डॉक्टर साहब, ग्रीन हाउस के बारे में आपा देखे कि भाई आपा थे बता रहे हो कि भाई आपने जो आसपास में जो कृषि से जुड़े विशेषज्ञ है वहां से आपा सलाह ले सका हाँ, लेकिन जो ग्रीन हाउस है वी के अंदर जो तापमान हुआ करे, तापमान ने किया नियंत्रित क्यों जावे है वो काई वी को एक तरीको रहे है, वी पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालो सा।
1: किसान भाइयों, जैसे कि राजस्थान में तापमान हमेशा ज्यादा रहता है, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं कि आपके अंदर एक हाइग्रोमीटर जो होता है वो लगाना जरूरी है। आजकल डिजिटल भी आ रहे हैं तो उसमें आपको तापमान का पता लग जाता है कि तापमान अंदर कितना चल रहा है, और जब तापमान अगर अधिक है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छत वाले फवारे, जैसे मैंने पूर्व में बताया आपको पॉली हाउस के छत वाले फवारे आप चलाइए, अंदर जो फॉगर्स लगे हुए हैं उनको समय समय पर चलाइए। और कुछ लोग फॉगर्स को आज भी चलाना नहीं जानते क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि फॉगर्स कितने समय के लिए चलाना है। बारीक बूंदे आती है एकदम जैसे धुंध होता है होती है सर्दियों के में, वैसी धुंध बनानी है आपको और उसके बाद में उसको कट करना है, और इससे आपको तापमान कम हो जाता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। इसके अलावा आपने जो मैंने कहा था आपको कि भाई नीचे हम जो मल्च, प्लास्टिक मल्च इस्तेमाल करते हैं वो आपको सिल्वर कलर की यूज करनी है, ऊपर की तरफ रखना है। बूंद बूंद सिंचाई तंत्र जो है उसका उपयोग करना है। इसके अलावा जो अगर आप फल कट फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको जो फॉगस नहीं यूज करने उसकी जगह आप मिस्टर्स यूज कीजिए।
0: डॉक्टर साहब, हरित गृह प्रबंधन।

0: ई विषय पर ते अति गणी चोखी मोटी जानकारी महासगड़ात ने दिया ई के लिए थाको घणो घणो मानसू धन्यवाद सा। और अब स्टूडियो री घड़ी आपने इशारो करी है कि आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम रो टेम पूरो होलो चालियो है सा। तो थाकी बहन मनस्वनी ने दियो विदा चाला और करा राम राम सा।
1: यह आकाशवाणी वासवाड़ा का FM माही चैनल है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर रात्रि के 8 बजे अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम बैरानी बात।

बैरानीवाद कार्यक्रम हमारा वारी सब बहनों ने सौराठी की रीता बहनों राम राम राम राम बहनों आजे अपने सौरानो कार्यक्रम है ने आजे बात करूंगा केंद्र सरकार ना 12 वर्ष ने उपलब्धि ने बारे में बात करूंगा जेन में आजे अपने चर्चा करूंगा सुकन्या समृद्धि योजना ने बारे में इन हाथे हाथी खरीफ नी फसल नी बुवाई नो समय अपने आवी गयो है तो इन बुवाई नी जे तैयारी यही या फिर इनमें जे महिलाओं नी भूमिका है इन बारे में चर्चा करूंगा इन हाथे हाथी महिलाओं ने स्वास्थ्य ने बारे में अपने बात करूंगा कि बहनों में जे कैल्शियम की कमी थी जा इन थी कि बहनों में हो समस्या थाए नहीं नो हो निदान है इन हाथे हाथी खेत बचाओ अभियान की चर्चा करूंगा ने हाथे हाथी अपने सोरा ऊपर अनिता बहन है अनिता बहन अपने खेतर में बुवाई की तैयारी कर रही थी हूँ तैयारी कर रहे एना थी कि बात करूंगा हाथे हाथे अच्छो सु गीत सांभरूंगा तो कार्यक्रम ने अपने शुरुआत करो केंद्र सरकार ने 12 वर्ष ने अपने सबने खबर है कि अपने जो केंद्र सरकार है एना 12 वर्ष पूर्ण थी गया है ने 12 वर्ष में सरकारे घनी प्रकार की योजना बनाई लोगों भले घना अच्छा कार्य करे है ने देश में घनी नवी नवी योजनाएं शुरू करी जिनो फायदो सबने मिली रहो है इन हाथी हाथी अपने ग्रामीण भाई बहनों बल्ले किसानों बल्ले ने बालिका बल्ले भी घनी प्रकार की अच्छी योजनाएं शुरुआत करी है निशो इन योजनाएं अच्छी सफलतापूर्वक चाली रही इनो अपने सब लाभ भी उठा भी रहा ने आज से भी एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना जी केंद्र सरकार ने खूब अच्छी योजना है तो इन बारे में अपने चर्चा करो कि आ योजना है 2015 की शुरुआत थी है ने आ प्रधानमंत्री जी ने जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इन तहत शुरू थी है आनी योजना में लड़कियों ने भविष्य ने सुरक्षित आर्थिक रूप थी मजबूत करवा बल्ले घनी योजना अच्छी योजना शुरुआत थी है ने आ एक लोकप्रिय छोटी बचत योजना है जे अपने बेटी बल्ले खूब अच्छी है कि इन्होंने बढ़ाई हो इन शादी हो या फिर और भी बेटियों बल्ले अपने धन की आवश्यकता पड़े तो आनी योजना में अपने छोटी छोटी पूंजी निवेश कर सको ने समय पर आनी योजना ना लाभ उठाई सको आनाथी कि अपने घनी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त था ने अगर अपनी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करव चाहे तो आनी योजना माध्यम थी इन्होंने उच्च शिक्षा भी अपने अलावी सको आनी योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं जिन बारे में अपने बात करो तो सबसे अच्छी विशेषता आणमी है कि आने में ब्याज दर खूब अच्छो है आने में 8.2% वार्षिक ब्याज दर है ने आ दर है ही समय समय ऊपर संशोधित भी था तो आ खूब अच्छी ब्याज दर है ने बीजो आने में न्यूनतम 250 रूपये थी लगाड़ी अधिकतम 1,50,000 रूपये तक की राशि अपने बेटियों के खाता में जमा करी सक बीजू आने योजना में खोलवानी तारीख तक 15 वर्ष सुधी अपने पैसा जमा करी सको इन बाद आ योजना नी परिपक्व थी जाए 21 वर्ष पूरा थी जाए तो आणमी जी राशि है अपने काढ़ी सको बेटियों की समृद्धि बल्ले बेटियों ने क्या भी कार्य बल्ले अपने लगाड़ी सको चाहे अगड़ी भणव चाहे तो भी लगाड़ी सको या बेटियों की शादी करावी तो भी लगाड़ी सको आणमी 10 वर्ष थी कम उम्र की बालिका है इन नाम थी खाते

0: खोला, ने जे बच्ची ना माता पिता हो या फिर जे भी कानूनी अभिभावक हो बालिका नाम ऊपर खातो खोली सके। ने बीजू एक अच्छी बात यह भी है कि एक परिवार ने बे लड़कियां नु खातो आ योजना ने माध्यम थी की खोली सको। इन अलावा अगर जुड़वा बच्चे हो तो बे थी की अधिक बच्चे नु भी खातो आण में खोलाई सके। ने आनी योजना में निवेश करवा बदले अपने कि कया भी अधिकृत बैंक हो या फिर जे नजदीकी डाकघर हो पोस्ट ऑफिस इनमें खातो खोली सको। तो खूब अच्छी योजना है बहने ही आनो लाभ है। घना भाई बहन उठा भी रहे कि अड़न बेटी नाम थी की पोस्ट ऑफिस में या कोई बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करी रही ने इनो लाभ है अड़न भविष्य में जरूर मिलेगा। ने बीजू आनी योजना नो ये भी है अच्छो है कि ब्याज दर अच्छी है तो पैसो है अपना बहुत जल्दी वृद्धि थाणवे। तो बच्चे ने उच्च शिक्षा ने मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आवे एना अच्छी तरह की अपने शिक्षा ली सको। ने आण में अगर बालिका ने 18 वर्ष की उम्र पूरी था ने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण थी जा तो इन बाद उच्च शिक्षा बदले जे भी कुल जमा राशि है इन 50% ही अपने काढ़ी सको। इन बाद 21 वर्ष बाद तो काढ़ी सको। ने आणी योजना में जे राशि अपने निवेश करी रहो इनमें टैक्स में भी छूट मिले। तो कुल मलावीने बहुत अच्छी आ योजना है। बीजू योजना की शुरुआत करवा बदले वधार दस्तावेज ने भी आवश्यकता नहीं। आण में बालिका ना जन्म प्रमाण पत्र ने जे ना अभिभावक है एनो है पहचान पत्र जेम के आधार कार्ड है वोटर आईडी है ने माता पिता नो जे निवास स्थान है एनु प्रमाण पत्र एटले जे डॉक्यूमेंट्स ने आवश्यकता रहे तो खूब कम डॉक्यूमेंट्स ने द्वारा में अपने बच्चे नाम थी खाता खोलावी सको ने आणी योजना नो लाभ उठावी सको। तो आ एक केंद्र सरकार की खूब अच्छी योजना है ने बहने ही आई घनी मात्रा में सोरा पर बहने ही माताएं उपस्थित थी ने घनी माता एणन बच्चे नाम थी योजना शुरुआत करी है। ने जेने बहने आने योजना में निवेश नहीं करियो ये अवड़ी भी है करी सकी ने अपने बच्चे नो भविष्य ही सुदृढ़ बनावी सकी। अभी सोरा पर आप आगळी बात करो खरीफ नी बुवाई बारे में तो अवड़ी खरीफ नी बुवाई नो आपणे तैयारी करी रहो मानसून आवता में आपणे खरीफ नी बुवाई कर दंगा। तो आना विषय पर बात करवा बदले अपने हाथे आज सोरा पर ही अनिताबेन अनिताबेन एणन खेतर में बुवाई तैयारी कर रही। तो सबथी पहले अपने अनिताबेन थी की खरीफ फसल बुवाई बारे में बातचीत करो हाथे हाथे संदेश आमरो पसे अगड़ी नी बात करो।
1: તમાર નામ હું હે
2: અનિતા
1: હું કામ કરી રહો
2: હું કામ ખેતીવાડીનું કામ કરો
1: અચ્છા કેટલા વીઘા જમીન હે
2: 5 વીઘા
1: કયા ગામ મે
2: આ બાપોર
1: બાપોર મે ને રેવા વાળા કીધું
2: રેવા વાળા ભવનપુરા
1: ના તો પછી ખેતરે દૂર પડે તો કામ કરવા પાછો
2: કામ કરવા જવું પડે વહેલું ઉઠીને
1: હા હા ને હવે હું ચાલી રહ્યો ખેતર મે
2: અબર તે ખેતી માં કડી હે હુડડાળી કરા હે રબી કી બીજવારામ તૈયારી કરા
1: અચ્છા બીજ વગેરે લાવી મળ્યું
2: હા બીજ વગેરે લાવા થોડું બધું લાવી મળ્યું
1: અચ્છા ને પેલા વરનું પડી લઉં હો કે
2: હા પેલે વરનું થોડું બધું રાખ્યું હતું થોડું બધું ફેર લાવવું પડે
1: અચ્છા તો પછી ક્યાંથી કી લાવો આ બજાર થી કી
2: બજાર થી લાવા
1: હા
2: બપોરે લાવા હા કે બજાર લાવા
1: હા કે બીજ આ વિતરણ ની દુકાને એ મળે
2: હા એ મળી જાય
1: એ અચ્છા કિંમત માં મળી જાય ખેતીવાડી માં પછી તમે કામ કરો કે મજૂર વગેરે રાખો
2: ज्यादा वेत मजदूर वगुरा कम पाके हूँ वेत हम करना
1: पूरा परिवार मलिन कर दो
2: पूरा परिवार मलिन करना
1: अच्छा तो खेतर में अवड़े हूँ बोवन तैयारी चली रही
2: अब बरते सोलिया बीस है मक्की है और कपा है
1: अच्छा अच्छा
2: वगैरह
1: तुम्हारे परिवार में कितना सदस्य
2: परिवार में है 4-5
1: साठ पांच से कहने बीजे देवर जेट वगैरह
2: जेट सार है दस सार भाई
1: अच्छा तो सब खेती बाड़ी सब मलिन इस करो
2: हाँ सब मलिन इस करो
1: हाँ एक बीजा ने खेतर में काम हो तो हाँ, करवा लगा
2: हम सब करवा लगा
1: हाँ बीजू खेतर में तमें बुआ पहले हूँ तैयारी करी मिली
2: बुआ पहले तैयार कड़ी मिली और हुड डाली करी मिली
1: अच्छा
2: इम करी मिली
1: पानी हाँ गहरी जुताई वगैरह करी के
2: हाँ इम करी मिली
1: खेतर ने पास खेड़ काढ़ी मिलो नी काम में करी मिली
2: इम करी मिली
1: करी मिली तो अच्छा है कि पहले की तैयारी करी मिलो तो पासो पानी पड़ तमे बुवाई करी सको
2: करी सको
1: तो बुवाई इन तैयारी तमारी पूरी थी गई तमे जेवी रे पानी पीवाड़ो ने ખાતર નાખવા અને ઈ કામ કરવા જો
2: તમે
1: સબ મળીને જો
2: મળીને
1: જો એકબીજા ને ખેતર કરવા
2: જાઓ
1: તો ઘણી અચ્છી વાત હે કે સામૂહિક રૂપથી તમે એકબીજાનું કામ કરી દો તો કામ એ નીકળી જાઓ ને આ પછી તમે ખોડ કાઢો એ હાથી કાઢો કે મશીન થી કાઢો?
2: ના મશીન થી કાઢો.
1: મશીન થી કાઢો. દવાઈ બી સાટો મેં?
2: હા દવાઈ બી સાટી.
1: તો પછી વધારે દવાઈ

0: और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही है। इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गाँव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, KVK के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद
3: दोस्तों। आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मैनो अनिता बहन अपने खूब अच्छी बात बताड़ी, जानकारी आ ली क्या खेतर ने तैयारी हती कर रहा हूँ, काबू है, जुताई है वगैरह तैयार कर ली दू है खेत ने। अभी भी बहने अपने भी बीज ने सब तैयारी करी रखा, तारे मानसून आवता में अपने बुवाई करी सका। हमें अपने बहनों स्वास्थ्य बारे में बात करा कि वर्तमान में अपने खान पान जीवन शैली एवं थी गई है कि बहने कई न कई समस्या थी ग्रसित रही, कई कई विटामिन की कमी थी जा, तो B12 की कमी थी जा, कई कई कैल्शियम की कमी थी जा, तो घना प्रकार की बीमारियां हैं या फिर समस्याएं हैं घेरी ले। तो आज से भी एक समस्या है कैल्शियम की कमी, इन बारे में अपने चर्चा करो कि बहन ने आ एक आम बात है कैल्शियम की कमी थी जा। बीजू बहनों ने 35 या 40 साल की उम्र था तो कैल्शियम की जो समस्या है ये खूब ज्यादा थी जा, तो एन थी कि एक तो हड्डी कमजोर थी जाए, बीजू ऑस्टियोपोरोसिस नामनी एक बीमारी रहे जो हड्डियों थी कि जुड़ी ली है, ये थी जा जिनमें हड्डियां काफी कमजोर थी जाए ने इनमें दर्द था वो नहीं शुरू थी जा। बीजू आने में कैल्शियम की कमी थी कि मांसपेशी में ऐठन था, थकान था, कमजोरी आवी जा, चिंता, चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव, बीजू दातों की समस्या, एवं घनी समस्या है कैल्शियम की कमी थी कि उत्पन्न थाय। एने हाथे हाथे हृदय संबंधी बीमारी भी थाय, ब्लड प्रेशर है अपने ये भी हाई थी जा, मतलब उच्च रक्तचाप ने भी बीमारी थी जा, ने कैल्शियम की कमी थी कि आ समस्या थाय से। एना अलावा अगर रजोनिवृत्ति थी जा, मतलब पीरियड बंद थी जाए, तो एने बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी थी जा, जिनथी कि कैल्शियम की कमी और ज्यादा थी जा। तो एक 40 या

0: अभी ग्रामीण महिलाओं के लिए उनका अपना कार्यक्रम बैरानी बात प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माँ ही चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा। देहरादून में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी में सरबजीत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएं जीती। और ग्लोबल शतरंज महोत्सव आज से मुंबई में शुरू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज का दिन खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
2: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु की अगुवाई में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने आज ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन किया, जबकि तन्वी शर्मा भी उलटफेर करने में सफल रही। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु, तन्वी, मालविका बंसोड़, ईशा रानी बरुआ और तान्या हेमंत सभी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने महिला सिंगल्स के पहले दौर में एक तरफा मुकाबले में पेरू की इनेस लूसिया कास्टिलो सालाजार को सीधे गेम में सिर्फ 30 मिनट में 21-13, 21-11 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ से होगा, जिन्होंने 1 घंटा 3 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में चीन की हान कियान को 22-20, 10-21, 21-14 से शिकस्त दी। दिन का सबसे बड़ा उलटफेर 17 साल की तन्वी ने किया, जिन्होंने 5वीं वरीय और दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को 45 मिनट में 21-12, 22-20 से शिकस्त दी। तन्वी अगले दौर में मालविका से मुकाबला करेंगी, जिन्होंने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड की तुरुंग सिहिंग को 15-21, 21-7, 21-13 से हराया। तान्या ने अमेरिका की ऐशिका जायसवाल को 39 मिनट में 21-17, 21-18 से हराया। तान्या का मुकाबला पूर्ण पावी चोचुवोंग से होगा। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा के ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी लिन जडेन और विक्टोरिया जोनाडी को 27 मिनट में 21-13, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। हालांकि भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ियों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। किरण जॉर्ज, तरुण मनिपल्ली और क्वालिफायर सनित दयानंद पहले ही दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात निशानेबाजी की। देहरादून में राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल इवेंट आयोजित किए गए। सरबजोत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएं जीती। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की त्रिशूल शूटिंग रेंज में कल राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल हुए, जिनमें पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह, आर्मी शूटर लक्षिता, पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट अखिल शिवराण और महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पाडेकर अपने अपने इवेंट्स में विजेता बने। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सरबजोत ने 245.9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। आर्मी के शूटर अजेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें कड़ी टक्कर दी।

0: लेकिन आखिर में 245.1 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वर्ल्ड चैंपियन सम्राट राणा 221.5 के स्कोर के साथ टॉप थ्री में शामिल है। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में आर्मी शूटर लक्षिता ने हरियाणा की सुरभि राव को सिर्फ 0.2 पॉइंट के अंतर से हराया। लक्षिता ने 240 का स्कोर किया जबकि सुरभि ने 239.8 का स्कोर हासिल किया। उत्तर प्रदेश की मानसी आनंद ने 220.2 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही। ISSF म्यूनिक विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि और पलक ने क्वालिफाई करने के बावजूद फाइनल में हिस्सा नहीं लिया। पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन फाइनल में भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के अखिल शराण ने नेवी के नीरज कुमार को सिर्फ 0.2 पॉइंट से हराकर पहला स्थान हासिल किया। अखिल का स्कोर 358.3 रहा जबकि नीरज 358.1 पर रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 345.4 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन फाइनल में महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पडेकर ने 358.2 के स्कोर के साथ पहला, वहीं कर्नाटक की तिलोत्मा सेन ने 357.2 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश की आशी चौकसे ने 345.5 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात फुटबॉल की। चार वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन फीफा विश्व कप कल से शुरू होने जा रहा है। इस बार का टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक है।

0: पहली बार इस विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। सुनते हैं फीफा विश्व कप पर एक खास रिपोर्ट।
1: अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट न केवल फुटबॉल का उत्सव होगा बल्कि खेल के इतिहास के सबसे बड़े वैश्विक आयोजनों में से एक साबित होगा। दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों की निगाहें एक बार फिर उन सितारों पर होंगी जो अपने देशों को विश्व विजेता बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना अपने खिताब को डिफेंड करने के इरादे से उतरेगा, जबकि फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार हैं। सबकी निगाहें अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पर होंगी, जिनके लिए ये विश्व कप अंतिम साबित हो सकता है। 2022 में कतर में विश्व कप जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाले मेसी एक बार फिर इतिहास रचने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में देखे जा रहे हैं। इंग्लैंड के जूड बेलिंगम, ब्राजील के विनीसियस जूनियर, स्पेन के युवा सनसनी लामिन यमाल और पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस भी इस विश्व कप के प्रमुख आकर्षण होंगे। अगर टीमों की बात करें तो अर्जेंटीना अनुभव और आत्मविश्वास के दम पर सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। फ्रांस के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन है, जबकि ब्राजील हमेशा की तरह अपनी आक्रामक शैली और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कारण खिताब की दौड़ में है। हालांकि विश्व कप केवल दिग्गज टीमों का मंच नहीं होता, हर बार कोई ना कोई बड़ी टीम, कोई ना कोई नई टीम उलटफेर कर इतिहास रचती है। इस बार मोरक्को, जापान, सेनेगल और उरुग्वे जैसी टीमें डार्क हॉर्स मानी जा रही हैं। मोरक्को ने 2022 विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा था और इस बार भी उसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले ही रोमांच से भरे होने वाले हैं। मेजबान देशों पर घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन का दबाव होगा, जबकि बड़ी टीमें शुरुआती चरण में ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहेंगी। इस विश्व कप की सबसे बड़ी विशेषता इसका नया प्रारूप है। 48 टीमों की भागीदारी से अधिक देशों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इससे प्रतियोगिता और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही देशों और नए सितारों के उभरने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान श्याम थापा ने कहा कि फुटबॉल विश्व कप की लोकप्रियता पूरे विश्व में है।
2: फुटबॉल इज मोस्ट लविंग गेम सारा विश्व में। आप सारा दुनिया अभी देखने में मस्त हो जाएंगे, सब बिजी हो जाएंगे, क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है। और ये आपसे नहीं, बहुत दो वर्षों से ये जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, बहुत बड़े बड़े नाम हम लोग के टाइम आगे से फुटबॉल में लिया जाता था, लेकिन ऐसे नाम अभी हम लोग जो रोनाल्डो, मेसी, ऐसे ऐसे कलाकार फुटबॉल में, उनको कौन भूल सकता है। मेरे को लगता है फुटबॉल

0: फुटबॉल जैसा क्रेज सारा विश्व में और कोई दूसरा गेम में नहीं है।
1: अगले कई सप्ताह पूरी दुनिया फुटबॉल के रंग में रंगी होगी। कहीं मेसी की आखिरी विश्व कप की कहानी लिखी जाएगी, कहीं एम्बाप्पे जैसे युवा सितारे अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं अनजान खिलाड़ी रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे। विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि सपनों, जुनून, गौरव और इतिहास का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है।

0: दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
1: शतरंज की मुंबई में 360 ग्लोबल शतरंज महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो गया है। ये प्रतियोगिता 18 जून तक खेली जाएगी, जिसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता एस किशोर की एक रिपोर्ट।
2: 58 लीडिंग चेस प्लेयर्स रिप्रेजेंटिंग 16 कंट्रीज, अमंग दम 14 ग्रैंड मास्टर्स, 34 इंटरनेशनल मास्टर्स, 6 फिडे मास्टर्स, 2 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स एंड 2 कैंडिडेट मास्टर्स कंप्राइज द स्टार स्टडेड फील्ड दैट विल फीचर इन द मास्टर्स सेक्शन कैटेगरी ए ऑफ द 361 मास्टर्स चेस टूर्नामेंट विच गॉट अंडर वे एट द एक्सपो हॉल एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई टूडे। The Masters section is the flagship event of the Rs. 60 lakhs prize money 361 Global Chess Festival organized by the Indian Chess School and brings together some of the strongest players from India and around the world with an average rating of 2,359. Conducted in a classical format of 9-round Swiss League, the tournament provides an ideal platform for players to compete for rating points.
1: Arabad. महिला विश्व कप की महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पिछले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजर अब अपने पहले T20 विश्व कप खिताब पर होगी। भारतीय महिला क्रिकेट में जब भी बड़े मैचों और बड़े मौकों की बात होती है तो एक नाम लगातार चर्चा में रहता है, जेमिमा रॉड्रिक्स। एक दिवसीय विश्व कप की तरह ही भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को इस T20 विश्व कप में भी जेमिमा से उम्मीदें होंगी।
3: हाल के वर्षों में अपनी आक्रामक लेकिन संयमित बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली जेमिमा रॉड्रिक्स ने दबाव भरे मुकाबलों में खुद को भारत की मध्यम क्रम की रीढ़ के रूप में स्थापित किया है। उनके करियर का सबसे यादगार अध्याय ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई ऐतिहासिक पारी रही। उस मैच में भारत ने 339 रन का लक्ष्य हासिल कर दुनिया को चौंका दिया था। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली और भारत की अब तक की सबसे बड़ी रन चेज की नींव रखी। इस पारी में उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त किया बल्कि दबाव में मानसिक मजबूती का भी शानदार उदाहरण पेश किया।
4: I was not doing well mentally, going through a lot of anxiety. Then being dropped was another challenge for me. But I think all I had to do was show up. So towards the end, I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was dead. But one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And that's what I did. I just stood there and He fought for me.
3: इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मंचों पर उनका प्रदर्शन चर्चा में रहा है। 2022 महिला विश्व कप में भले ही भारत खिताब तक नहीं पहुंच पाया लेकिन उस दौर से जेमिमा के खेल में निरंतरता और परिपक्वता दिखने लगी थी। उसी दौर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उपयोगी पारियां खेलकर ये संकेत दे दिया था कि वह बड़े मैचों की खिलाड़ी बन सकती हैं। हाल के वर्षों में उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास में लगातार सुधार देखने को मिला है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उन्होंने कई बार मध्य क्रम में आकर पारी को संभाला और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बनाए। 2025 के विश्व कप अभियान में उनका योगदान सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने दबाव में टीम को स्थिरता देने का काम भी किया। अब जब भारत आगामी ICC महिला T20 विश्व कप की तैयारी कर रहा है, टीम की उम्मीदें एक बार फिर जेमिमा जैसे खिलाड़ियों पर टिकी है। हाल ही में उन्होंने भी माना है कि पिछले एक दिवसीय विश्व कप की जीत ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है और अब भारतीय टीम हर बड़े मुकाबले में जीत का दावा करने की मानसिकता के साथ उतर रही है।
4: I think what happened about winning that World Cup is everyone was a part of it. Everyone knows what pressure is like. But at the same time, everyone knows that, okay, we have crossed the line once. We can do it again. And that rubs off, that belief. You know, a lot of times we visualized it so much, but now we've lived it. So it helps us believe even more that we can do it again. So
1: और अब बात तीरंदाजी की। हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी

0: में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए

0: प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस किस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के

0: के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक सीरी नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13

हजार करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

तू बदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायनी का लिखा गीत था और रवि का संगीत था। विविध भारती से इस समय सुन रहे हैं आप, आपके लिए कार्यक्रम।

आपके लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो। फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी की रचना शंकर जयकिशन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं।

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था प्यार किए जा।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप

0: की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो इनकी जवानी जो शहीद।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इस गीत को लिखा था, ओपी नैयर ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। मोहम्मद रफी की आवाज में लीजिए एक गाना सुनिए। राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं और मदन मोहन ने तर्ज बनाई है। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: मोहम्मद रफी के गाये इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलान, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
3: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
2: क्या तकते हो?
3: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान ली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवाला तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मारा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
4: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस, जवान, जिंदा

0: दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डगलस मास्टर विट्ठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वारे जमाने, कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा आशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
2: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रका की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।

0: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
1: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक।

0: के दौर से गुजरकर जितेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के करदार कर रहा हूँ।
1: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज, शर्मिला टैगोर, बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता आप्टे के मुकाबले में कर चुका हूँ। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने की कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूँ तो वो मुझे बदमाश, कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो। वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
2: मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी?
3: पत्ता महेश, जूता खराब कर दिया, साफ करो।
2: मेरी बेटी कहाँ?
3: बैठे कौन सा बेटे?
2: उस राज्य से तुम उठा कर ले गए थे।
3: हमें कुछ याद नहीं।
2: याद करो, प्लीज याद करो।
3: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
2: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
3: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ और तुम मेरे कदमों में।
2: मुझे सिर्फ इतना बतला दो, मेरी बेटी कहाँ है?
3: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
2: मुझे एक दोस्त से मिलने दो प्लीज।
3: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
0: गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहां तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई में मिस्टर प्राण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एसएम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामिन ललिता बाई का है, और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना ए भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

0: लेकर सारे बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में मणिमाल के बदले गले में विषधर को लटकाए, अपनी पार्वती को रिझाने को,
1: अपनी पार्वती को रिझाने।

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: ना मालूम कौन सी चट्टी का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजर ढीले कर दिए। कम वक्त देसी मैन जंगली
2: हाथी हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
3: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब्बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दुला, नहाओ के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
3: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई
1: कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
3: नहीं नहीं।
1: मगर कौन सी परी भैया?
3: अरे वही बसंती।
1: अच्छा वो तुहार मार छुट्टिया।
3: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी

घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं, साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब
3: है? अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
4: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
5: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बूद, नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।
6: यार हमारी बात सुनो,

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों, बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं।

0: रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए वरना।
1: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर रात्रि के 10 बजे अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुनवाते हैं फिल्म संगीत का पहला गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, अलका जी की आवाज, नदीम श्रवण का लिखा गीत।

सुन रहे हैं ये गीत निलेश मिश्रा का लिखा हुआ केके की आवाज में, फिल्म रोग से। संगीत है MM करीम का।

यही तो भी आपने फिल्म के दर से वो देखना है ना, अलका याग्निक की आवाज में सुना, आनंद बख्शी के बोल थे और उत्तम सिंह का संगीत था। आइए सुनाते हैं अंतिम गीत फिल्म संगीत का फिल्म राज से। अलका जी और उदित नारायण के मिली जुली आवाज है, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

अलका जी और उदित नारायण के गाय इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा

0: करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।